0: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
1: 1550 KRPI Radio ते चल रहा है लाइव फ्रॉम गुरु नानक सिख गुरुद्वारा साहिब स्कॉट रोड सरी।

श्री नामदेव जी महाराज के अंदर भावना प्रधान है। दरअसल भगत नामदेव जी महाराज भावना प्रधान पुरुष ने, ते जिथे भावना प्रधान है, जज्बे प्रधान ने, बस ओही भगत है। दो तरह के मनुख ने, कोई अकल दे तल ते जीवंदा है, कोई हिरदे दे तल ते जीवंदा है, कोई बौद्धिक तल ते जीवंदा है, कोई दिल दे तल ते जीवंदा है। जीवन दे ए दो ढंग ने। जो बौद्धिक तल ते जी रहा है उस दे अंदर विचार प्रधान होवेगी, जो हिरदे दे तल ते जी रहा है उत्थे भाव प्रधान होवेगा, पर जो ना बौद्धिक तल ते जी रहा है ते ना हिरदे दे तल ते जी रहा है, वो मनुष्य ही नहीं है, वो पशु है। पशु इन्हां दोहां थल्लां तो थल्ले ही जीवंदा है। इत्थे प्रश्न खड़ा होंदा है, भाव प्रधान है कि विचार प्रधान है? दरअसल विचार नाल वस्तु नू समझना है, हस्ती नू समझना है, और भाव नाल हस्ती नाल जुड़ना है, वस्तु नाल जुड़ना है। अगर भाव ना होए तो जुड़ नहीं सकांगे, विचार ना होए तो समझ नहीं सकांगे। जन्म तो मनुख भाव ही लेके आंदा है। इस तो एक गल स्पष्ट हो गई कि विचार नालों भाव दी आवश्यकता ज्यादा है, अधिक है। भाव प्रथम है, विचार बाद देच है। भाव करके एक मासूम बच्चा मां नाल संबंध जोड़दा है, पिता नाल संबंध जोड़दा है, भैणा नाल संबंध जोड़दा है, भरावां नाल संबंध जोड़दा है। अजे ते विचार दी दुनिया उत्थे आरंभ ही नहीं हुई, अजे ते भाव दी दुनिया। कहिंदे ने परमात्मा नूं समझण दे विच ही ज्ञानियां दा समा लंघ जांदा है, और फिर भी पूरा समझना उसनूं कठिन है। थोड़ा जिहा जो तू समझे उहनूं हुण अपनी जिंदगी दे विच प्रयोग दे विच लिया, तो हुण जज्बा पैदा कर, भाव पैदा कर, श्रद्धा पैदा कर, ते उस नाल जुड़। जितना भी तू विचारेगा, विचारां दी पहुंच उस प्रभु तक नहीं होवेगी। थोड़ी बहुत जो विचार दे राही तेनू झलक मिली है, तो हुण जुड़न दी कोशिश कर। पर विचारां दी दुनिया जो बहुत अगे लंघ जाए, महान दार्शनिक हो जाए, महान फिलोसफर हो जाए, तो फिर उस लई जज्बियां नूं पैदा करना बहुत कठिन हो जाता है। उर्दू दे अजीम शायर इकबाल दा ऐसा कहना है, तेरे सीने में दम है दिल नहीं है, तेरा दम गर्म ये महफिल नहीं है, निकल जा अकल से आगे के ये नूर चिरागे राह है मंजिल नहीं है। ऐ बंदे अकल दी दुनिया तो अगे लंघ जा, जज्बियां दी दुनिया च पहुंच, वलवलियां दी दुनिया च पहुंच, भावना दी दुनिया च पहुंच। जे तू कोई रस लेना है, स्वाद लेना है, आनंद लेना है, हकीकत है अकल ते रस्ते दा दीव है, अकल ते रस्ते दा चानना है। ते हुण दीवे दी ही कोई परिक्रमा करदा रह जाए ते मंजिले मकसूद तक पहुंचना कठिन हो जाएगा। आम आख्या जांदा है, कई दफा अंधी श्रद्धा वाला भी भटकदा भटकदा पहुंच जांदा है, पर कई दफा विचारां दी परिक्रमा करन वाला विचारां दे विच ही फसा रह जांदा है, और ईश्वर तक पहुंचना उस लई औखा हो जांदा है। विचारक अपने विचारां दे विच ही कई दफा उलझ के जो है रह जांदा है। हजारों साल फिलोसफी की तना तनी रही, खुदा की बात जहां पे थी वहीं पे रही। आखिर कितना भी खपिए, कितना भी विचारीए, ता भी विचारदियां विचारदियां पता चलदा है कि जिथों असी शुरू होई सी उत्थे ही खड़े, एक कदम भी अग्गे नहीं वधे। विचार विचार के जद ऐसा पता चले कि ओ साडे विचारां च नहीं आउंदा, ओ साडी सोच मंडल दे च नहीं आउंदा, ओ साडे बौद्धिक पकड़ दे च नहीं आउंदा, बस उसे क्षण चाहिदा है कि मनुख जज्बियां नूं जन्म देवे, श्रद्धा नूं जन्म देवे, विश्वास नूं जन्म देवे, भावना नूं जन्म देवे। तो भगत नामदेव जी महाराज भाव प्रधान पुरुष ने, और आप दे अंदर जदों थोड़ा जिहा भी भाव कमजोर होंदा है, थोड़ा जिहा भी प्रेम पिछे हटदा है, तां आप तड़प के कहंदे ने, मोहे लागती ताला बेली, बछरे बिन गाय अकेली, पनिया बिन मीन तलफे,
त्यों राम नाम बिन बापरो नामा। मैं ते तड़पदा हे प्रभु तेरे विछोड़े च इंज जैसे पानी तो बिना मछली तड़पदी है, जिन्हें गौ मां तो बिना उसका बछड़ा ओ तड़पदा है, व्याकुल होंदा है, पुकारदा है और उच्ची धुन नाल आवाज मारदा है। हे प्रभु जद भी रंजक मात्र भी विछोड़ा होवे ते विछोड़ा की है जज्बियां दा कमजोर होना, भावनावां दा कमजोर होना, श्रद्धा दा छीण होना, प्रेम दा थोड़ा जिहा बुझना, बस उस दे नाल ही भगतां दे अंदर तड़पणी शुरू हो जांदी है। कारण कि प्रेम दी अधिकता, भावना दी अधिकता, श्रद्धा दी अधिकता आनंद नूं जन्म देंदी है, रस नूं जन्म देंदी है। श्रद्धा घटी, भावना घटी, प्रेम घटिया, रस घट जांदा है। और बिल्कुल प्रेम नहीं, बिल्कुल श्रद्धा नहीं, बिल्कुल भावना नहीं, तो देखिया गया बिल्कुल कथा कीर्तन विच रस नहीं रह जांदा, बिल्कुल सत्संग विच रस नहीं रह जांदा। रस ते तां हुण बनेगा जे इस शब्द नाल, कथा नाल, कीर्तन नाल भावना जोड़ी है, श्रद्धा जोड़ी है, प्रेम जोड़ी है, तो फिर रस दी गंगा वग तुरदी है। और प्रेम मनुख नूं तृप्ति दे जांदा है, श्रद्धा भावना वाला मनुख अठे पैर तृप्त रहिंदा है, शुकराने विच रहिंदा है। जिनी चाखिया प्रेम रस से तृप्त रहे आघाय। बौद्धिक तल ते जीण वाला बंदा ओ अक्सर गिलियां दे जीवदा है, हे प्रभु मैं इतना कीता ते प्राप्त की होया। बौद्धिक तल ते जीवन वाला मनुख अक्सर व्यापारी हो जांदा है। तो दुनिया दे चोटी दे व्यापारी समझ लेने चाहिए ने कि बौद्धिक तल ते जी रहे ने, हिरदे दे तल ते नहीं। ते दुनिया भर दे चोटी दे संत भगत उन्हां बारे कहना पएगा कि हिरदे दे तल ते जी रहे ने। बुद्धि दा प्रयोग करदे ने पर जीवन दा केंद्र हिरदा है। व्यापारी आम दुनियादार बंदा बौद्धिक तल ते जीवदा है, विचारां दे तल ते जीवदा है, श्रद्धा दा ते एवें कदी कदी अपनी गरज दी पूर्ति लई इस्तेमाल करदा है, वरतों करदा है। और इस तरीके नाल श्रद्धा भी अपवित्र हो जांदी है, इस तरीके नाल वो प्रेम भी धुंधला ते मैला होंदा है। तो भगत नामदेव जी महाराज कहिंदे मैं ते इंज तड़पदा हे प्रभु तेरे विछोड़े च, ते विछोड़ा उदो ही आउंदा है जद प्रेम मध्यम पैंदा है, जद श्रद्धा छीन आउंदी है, जद किधरे भावना नूं सट लगदी है, जद किधरे विश्वास कमजोर आउंदा है, उदो रस आनंद और सुकून भी एक पासे हो जांदा है। तो तड़पना ते कुदरती गल है, शुरू होवेगी मोहे लागती ताला बेली बछरे बिन गाय अकेली। इस तरह भावपूर्वक जीवन बतीत करने वाले ने श्री नामदेव जी महाराज। सिर्फ आप दे अंदर भावना ही प्रधान नहीं, बल्कि आप दे कोल विचार भी ने। ऐसा ना समझ लिया जाए कि भगत विचार बिल्कुल नहीं रखते, नहीं, उन्हां दे जीवन दा केंद्र ते श्रद्धा है, उन्हां दे वर्तन वाले वे विच विचार ने। वो वस्तु नूं समझदे ने, विचार नाल जुड़दे ने, भावना नाल। परमात्मा दा थोड़ा बहुत बोध हासिल करके जैसे वो प्रभु नाल भाव करके जुड़दे ने, तो परमात्मा दी बहुत वड्डी सूझ भगतां दे कोल आउंदी है। भावें आम दार्शनिक फिलोसफर बहुत कुछ पढ़िया लिखिया होवे, तां वी उतनी सूझ नहीं रखेगा जितनी कि भगत कोल है। एक अनपढ़ भगत कोल भी जितना परमात्मा दा ज्ञान है, उतना चोटी दे पढ़े लिखे कोल भी नहीं होवेगा, क्योंकि भगत ते जुड़े है, भगत ने ते रस माणे है, भगत नूं ते उसदी होंद दा पूर्ण तौर ते पता है, क्योंकि वह जुड़िया होया है। ते फिलोसफर दार्शनिक विचार वह ते सिर्फ विचार कर रहा है, वह ते सिर्फ विचारां दे तल ते जी रहा है। इस वास्ते भगतां ने ऐसा आख्या भी है, भगत सिरमौर श्री रविदास जी महाराज कहिंदे ने, पढ़िए गुणिए नाम सब सुनिए, अनुभव भाव न तरसे, लोहा कंचन रिंड होए कैसे, जो पारस नह परसे। श्री कबीर जी महाराज का भी ऐसा कहना है, हर जस सुने न हर गुण गावे, बातन ही असमान गिरावे, ऐसे लोगन स्यों क्या कहिए, जो प्रभ किए भगत ते बाहज, तिन ते सदा डराने रही। ए भगत विचारां दा ते सिर्फ प्रयोग करदे ने, जीवदे ने हिरदे दे तल ते,
भावना दे तल ते और जद भावना करके प्रभु नाल जुड़दे ने तो इना दे अंदरों जो गीत फुटदे ने जो ज्ञान फुटदा है वो इस तरह है जैसे कि पहाड़ा देचों कोई झरना वग तुरे है। श्री नामदेव जी महाराज दे विचार कितने बुलंद ने, ज्ञान कितना महान है, उना दे एक पावन पवित्र शब्द तो पता चलता है। आम गाथा है और ओ भाई साहब भाई गुरुदास जी ने भी लिखी है कि कम किते प्यो चलिया नाम देव नू आख सुनाया। नाम देव नू सारी गल सुना देती, ठाकुर दी सेवा करें घर विच मूर्तियां रखियां सन ते नाम देव नू कहंदे ने तू अमृत वेले उठना है, तू ठाकरा नू इशनान कराण लई नदी तो मांझी हुई गागर विच जल भर के लियाउणा है। पवित्र गागर विच जल भर के लियाउणा है ते ठाकरा नू इशनान कराणा है। बगीचे विच जाके फुल तोड़ने ने, बगिया विच जाके ते तोड़े हुए फुलां दी माला बना के ठाकर दे गल विच पाणी है। सिर्फ इतना ही नहीं, घर विच जिहड़ी कपिला गऊ है उसका दुध चोके तू ठाकरा नू पिलाणा है। इस सारा कर्म जो उन्हां दा पिता नित करदा सी, चूंकि अज किधरे बाहर कम कार लई जा रहे है तो नामदेव नू कह दिता है जितने चिर तक मैं ना आवां ए सारा पूजा ए सारा अर्चा बंदन तू करना है। अमृत वेले बने हुए रोजाना दे सुभाव मुताबक आप उठे ने ब्रह्म मुहूर्त विच, गागर पित्तल दी सिर ते रखी है, नदी दे तट ते गए हैं, गागर खूब मांझी है, इशनान कीता है, गागर नू भरे है, ता आप दी दृष्टि जल जंतुआं ते पै गई, मछलियां ते पै गई, कुछ मेंढक सन उना ते पै गई, कुछ कछुए सन उना ते पै गए। आप दे अंदरों अमर गीत दा झरना इंज फुटिया, आनी ले कुंभ भराई ले उद्दक ठाकर कोई स्नान करो पर 42 लाख जीव जल में होते बीठल भेला काहे करो। महाराष्ट्र देश प्रभु दा एक नाम बीठल भी है, उसे दाई आप प्रयोग कर देने, बीठल नाम दा एक मंदिर भी है, बीठल मंदिर पंडरपुर देश और ओ तीर्थ है और बहुत वड्डी पूर्णमाशी वाले दिन भीड़ रहती है। श्री नामदेव जी महाराज कहते हैं ऐ बीठल दस मैं की करा, मैं पानी भरे है गागर मांझी है तेनू इशनान कराना है पर करा कि पानी पवित्र नहीं है, क्यों कि 42 लाख जूनिया ते आखर पानी दे चिने ते ओ सारा क्रिया कर्म पानी दे च ही कर दिया ने, जन्म उना दा पानी देच, जीवन उना दा पानी देच, मरण उना दा पानी देच, सारी क्रिया पानी देच और एक कुल मखलूक दा अद्धा हिस्सा पानी देच है। पुराने शास्त्रां दी गणत दे मुताबक 84 लाख जोनिया ने, जेदे चों 42 लाख जल देच ने, 21 लाख थल जंतु ने और 21 लाख नभ जंतु ने आकाश देच उड़न वाले। इस ढंग नाल 84 लाख दी गिनती कीती गई है पर ए अद्धा जीव मंडल सारे दा सारा पानी देच है। तो नामदेव कहंदे ने जद जीवन पानी देच है, जन्म पानी देच है, मरण पानी देच है, ए पानी पवित्र नहीं हो सकदा, ए ते अपवित्र है। हे प्रभु मैं इस जल दा तैनू इशनान नहीं कराना, खाली गागर लेके आ गए और सोच रहे ने अज ठाकरा नू इशनान नहीं कराना, पानी ते अपवित्र है ते ए ते ठाकरा नू अपवित्र करना होवेगा। पर ए सोचनी आप दे अंदर जो फुटी है गालबन 11 साल दी उम्र विच, छोटे ने बच्चे ने, पिता बाहर जा रहे है ते पुत्र नू समझाया है ए सब कुछ तू रोज करना है पर इस मासूम बालक दे धार्मिक संस्कार इतने प्रबल ने ते बुद्धि इतनी उज्जवल है। आप कहंदे ने नहीं ये जल ते अपवित्र है ते अपवित्र जल दे नाल हे प्रभु मैं तेनू इशनान करावा ते किवें करावा। छोटी जिही टोकरी लैके आप बगिया विच गए, फुल तोड़न लगे ने ते फुलां दे उत्ते
ਮੰਡਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਭੌਂਰੇ ਤਿਤਲੀਆਂ। ਆਪ ਦੇਖਦੇ ਆਈ ਇਕਦਮ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਕਿ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀਆਂ ਮੱਖੀਆਂ ਵੀ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਚੋਂ ਰਸ ਕੱਢ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫੁੱਲ ਵੀ ਪਾਵਨ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਪਵਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਸ ਤੇ ਭੌਂਰੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੋਂ ਰਸ ਤੇ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀਆਂ ਮੱਖੀਆਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਤਿਤਲੀਆਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਲਿਆਜ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਮਾਲਾ ਪਰੋ ਕੇ ਹੇ ਠਾਕਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਗਲੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਵਾਂ, ਜਦਕਿ ਇਹਨਾਂ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਭੌਂਰੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਤਿਤਲੀਆਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸ਼ਹਿਦ ਦੀਆਂ ਮੱਖੀਆਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਆ ਨੀਲੇ ਫੂਲ ਪਰੋਈ ਲੈ ਮਾਲਾ ਠਾਕਰ ਕੀ ਹੋ ਪੂਜ ਕਰੋ, ਪਰ ਪਹਿਲੇ ਬਾਸ ਲਈ ਹੈ ਭੌਂਰੇ ਬੀਠਲ ਭੇਲਾ ਕਾਹੇ ਕਰੋ। ਹੂ ਬਹੁ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾਕ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਮਾਈ ਗੋਬਿੰਦ ਪੂਜਾ ਕਹਾ ਲੈ ਚਰਾਉ, ਅਵਰ ਨਾ ਫੂਲ ਅਨੂਪ ਨਾ ਪਾਉ, ਦੂਧ ਤਾਂ ਬਛਰੇ ਥਨੋ ਬਿਡਾਰਿਓ ਫੂਲ।

दी माता ने गऊ दा बछड़ा खोलिया। बछड़ा थन चुंगन लग पिया ते नामदेव जी महाराज अपनी मां नूं कहिंदे ने, पहले ए बछड़ा दुध पिएगा। हां मेरे बच्चे, पहले बछड़ा दुध पिएगा तां ही गऊ दुध देंदी है। तो आप कहन लगे, मां मैनूं ये दुध नहीं चाहिदा, इस दुध दा भोग मैं ठाकरां नूं नहीं लवाना। क्यों? आ नहीं ले दूध रिधाई ले खीरन, ठाकर को नैवेद करो पर पहले दूध बितारे ओ बछरे, बिठल भेला काहे करो। हे बिठल, दस मैं की करा, ए दूध ते पहले चुंग गया बछड़ा, उन्हें पवित्र कर देता है। थना दे दूध त बछरे थनो बिटारे हो। भगत रविदास जी महाराज कहने ने, आनी ले दूध रिधाई ले खीरन, ठाकर को नैवेद करो पर पहले दूध बिटा रहे हो बछरे, बिठल भेला काहे करो। ए बिठल, दस मैं की करा, दूध ते अपवित्र हो गया, इते पहले बछड़े ने पी ले, ते मैं ते तेनू पहले भोग लवाना सी, पर इते बछड़ा ही पहले भोग ला गया और थना दे ही झूठा कर गया, तो मैं इसका भोग लवावा ते किवें लवावा। अज पूजा नहीं हुई, अज ठाकरां दा इशनान नहीं होया, अज ठाकरां दे अगों दुध नहीं रखया गया, दुध नहीं पिलाया गया। आप बैठे ने, सोच दे पिता नाराज होवेगा, पिता औखा होवेगा। इस तरह दियां सोचां दे आप पए ने, ते आप दे अंदरों अमर धुनि इंज उठी, ईबे बीठल ऊबे बीठल, बीठल बिन संसार नहीं, थान थनंतर प्रणवे नामा, पूर रहो तू सर्व मही। हे प्रभु, जद मैं सोचया कि तेनु इशनान करावा, ता तू मच्छी हो के पहले आप ही जल विच इशनान कर रहे हैं, मैं तेनु की इशनान करावा। हे प्रभु, जद मैं तेनु सोचया, तेरे बारे सोचया कि इशनान करावा, ता ए भी विचार पैदा होए कि इशनान ते उसनु कराया जांदा है जो मैला हो जाए। क्या तू मैला हो जाना है? साहिब कहंदे ने, गुरु अर्जन देव जी महाराज, हम मैले तुम उजल करते, हम निर्गुण तू दाता, तू ते उज्जल है, तू ते पावन है, तू ते पवित्र है, मैले ते असी हो जाने, सड़ा तन मैला सड़ा मन मैला। हे प्रभु, तू ते निर्मल है, तू ते स्वच्छ है, तू ते पावन है, तू ते अति पवित्र है। तो श्री नामदेव जी महाराज कहंदे ने, इशनान ते मैं तेनु तां करावा कि तू मैला हो, पर तू ते कदी मैला होंदा ही नहीं, और तेनू की इशनान करावा, तू जल जंतु होके अठे पैर जल विच रह रहे हैं, सागरां विच रह रहे हैं, दरियावां विच रह रहे हैं, झीलां विच रह रहे हैं, तेनू की इशनान करावा। इंज ब्रह्म ज्ञान दा पूर्ण बोध भगत नामदेव जी महाराज दे अंदरों पैदा होया। हे प्रभु, जल विच तू मच्छी विच तू, तू ते व्यापक है। ईबे बीठल ऊबे बीठल, बीठल बिन संसार नहीं, थान थनंतर प्रणवे नामा, पूर रहो तू सर्वमही। श्री नामदेव जी महाराज अगां फुल्लां बारे ऐसा कहंदे ने, हे प्रभु, जद मैं सोचया कि तेनू फुल्लां दी माला बना के पहनावा, ते तू तितली होके शहद दी मक्खी होके भौरा होके आप ही पहले रस ले लेना है, तेनू की मैं माला पहनावा। जद मैं सोचिया तेनू दूध पिलावा, पर तू बछड़ा होके आप ही पहले दूध पी लेना है, आप ही भोग ला लेना है। गऊ तू बछड़ा तू दूध तू, तू ही तू है। इबे बीठल ऊबे बीठल, बीठल बिन संसार नहीं, थान थनंतर प्रणवे नामा, पूर रहो तू सर्वमही। इत्थों ऐसा भी पता चलता है कि श्री नामदेव जी महाराज निर्गुण ब्रह्म दे उपासक ने, व्यापक ब्रह्म दे उपासक ने। आप दे ऐसे बोल भी ने, हिंदू पूजे देहुरा, मुसलमान मसीत, नामे सोई सेव्या, ना देहुरा ना मसीत। हिंदू लभदा है मूर्तियां दे प्रभु नो, मुसलमान लभदा है खानकाह दे चों, पर नामदेव जी महाराज कहंदे, मैं ते जिधर देखदा तेरे तो बिना कुछ है ही नहीं, तू ही तो है। इसनो श्री नंदलाल जी महाराज ने इंज बयान कीता है, ब्राह्मण मुश्ताक के बुद्ध,
زاہد فدائے خانقاہ۔

0: हर को जा जामे मुहब्बत दीदायम सरशारस्त ब्राह्मण लबदा तेनु बुतां दे चौं और मुस्लिम लबदा तेनु खानका दे चौं पर हर को जा जामे मुहब्बत मैनू ते हर थां ते तेरी मुहब्बत तेरा प्यार ही दिखाई देंदा है चाहे वो मंदिर है चाहे वो मस्जिद है हर पासे तू ही तो है। तो श्री नामदेव जी महाराज कहंदे हिंदू पूजे देहोरा मुसलमान मसीद ना में सोई सेविया ना देहुरा ना मसीद तो फिर किथे है जे मंदिर ते मस्जिद दिच नहीं तो फिर किथे है। तो नामदेव कहंदे सबे घट राम बोले राम बोले रामा बोले राम बिना को बोले रे मेरा राम घट घट दिच बोल रहे है और राम तो बिना कौन बोल सकता है राम ही बोल रहा है पशुआं दे च राम ही बोल रहा है पक्षियां दे च राम ही बोल रहा है मनुखां दे च राम ही बोल रहा है पवन दी शांशां दे च राम ही बोल रहा है सागर दे गर्जन दे च बदलां दे गर्जन दे च और सागर दी गर्जन दे च ही नहीं प्रभु बोल रहा है कोयल दी कू दे च बुलबुलां दे चहचहाण दे च हे प्रभु तू ही ते बोल रहे हैं सबे घट राम बोले रामा बोले राम बिना को बोले रे हे प्रभु तू ही बोल रहे हैं सब घट दे अंदर बोल रहे हैं। तो इस तरह जो व्यापक ब्रह्म है इस तरह का जो व्यापक परमात्मा है श्री नामदेव जी महाराज उस दे पुजारी ने नामदेव जी महाराज की दृष्टि प्रभु एक व्यापक सत्ता है वो अखंड ज्योति है खंडित नहीं है टुकड़िया टुकड़िया दिच नहीं है अखंड ज्योति है व्यापक है पर उस तक किवें पहुंची है ते उसनू किवें प्राप्त करिए नामदेव दे ये आखरी बोल आप जी दे समक्ष भेंट करा। श्री नामदेव जी महाराज दा फरमान ज्यों जल मांझे माछलो मार्ग पेखणो न जाई ज्यों आकाशे पंखी अलो खोज निरखो न जाई उस प्रभु नू किवें तलाश करिए ते उस परमात्मा तक किवें पहुंचिए जो व्यापक है किवें पहुंचिए मार्ग की है आखिर रस्ता की है। तो नामदेव कहंदे ने जैसे जल विच मच्छी चलदी है ते रस्ता बनदा है उंज बना बनाया कोई रस्ता नहीं है बना बनाया कोई मार्ग नहीं है चलदियां ही मार्ग बनदा है आसमान दे बने बनाई कोई सड़क नहीं है पंछी उड़दा है ते मार्ग बनदा है उंज कोई मार्ग नहीं उंज कोई रस्ता नहीं बस उड़दियां ही रस्ता बनदा है ते मच्छी दे चलदियां ही सागर विच मार्ग बनदा है उंज कोई मार्ग नहीं। मनुख जैसे जैसे राम दा रटन करना आरंभ कर देंदा है राम दा मार्ग बनना भी शुरू हो जाता है। गुरु गुरु दी आराधना जैसे मनुख आरंभ कर देंदा है गुरु गुरु दा नाम लेना जब शुरू कर देंदा है तो गुरु दा मार्ग भी बनना नाल शुरू हो जाता है बना बनाया मार्ग नहीं है इत्थे जपदिया मार्ग बनेगा इत्थे नाम उचारण करदिया ही मार्ग बनेगा। जमीन दे उत्ते सानू बनिया बनाईया सड़कां मिल सकदियां चलना सानू पैंदा है सड़क नहीं बनानी पैंदी पर इत्थे अध्यात्मक मंडल दे उत्ते ऐसा है कि असी जब चलांगे तो चलदियां ही सड़क बनेगी। जैसे असी पृथ्वी ते भी कई दफा देखने हां कि लगातार मनुख किसी एक थां तो लंघन तो अपने आप पगडंडी बन जांदी है एक रेखा बन जांदी है एक मार्ग बन जांदा है। अध्यात्मक मंडल दे ऐसा है वाहिगुरु जपना आरंभ कर दईए बस आरंभ करदिया ही मार्ग बनदा है जैसे मच्छी चले तो रस्ता बनदा है उंज कोई रस्ता नहीं इत्थे इंज पहुंचना है परमात्मा तक जिवें मच्छी एक थां तो दूसरी थां ते पहुंचती है जिवें पक्षी एक थां तो दूसरे थां तक पहुंचता है। इसनू खोले है परम दार्शनिक संत गुरु घर दे वेद व्यास भाई गुरदास गुरुमुख खोज अगम है ज्यों जल अंदर मीन फिरंदा गुरुमुख खोज अलख है ज्यों आकाशे पंख उड़ंदा गुरुमुख जिड़ा है वो परमात्मा की खोज इस तरह कर लेंदा है जिवें सागर विच मच्छी एक थां तो दूसरी थां ते पहुंच जांदी है जिवें पक्षी एक थां तो दूसरी थां ते पहुंच जांदा है बिना मार्ग दे उड़दिया ही मार्ग बनता है चलदिया ही मार्ग बनता है। इस तरह गुरु का सिख जब जपदा है तो जपदिया ही जपदिया परमात्मा तक पहुंच जांदा है, ईश्वर तक पहुंच जांदा है, अकाल पुरख तक पहुंच जांदा है। हू बहो श्री नामदेव जी महाराज यही कुछ कह रहे ने, मार्ग बना बनाया नहीं है, राम राम जपदे ही राम दा मार्ग बनेगा और राम दी लीनता नसीब होवेगी। राम नाम विच लीन, बिठल बिठल विच लीन, श्री नामदेव जी महाराज अपने गीता दे राही जगत नु बिठल विच लीन करदे रहे, राम विच लीन करदे रहे और भ्रमण करदिया करदिया अनेकां नु आपने राम विच लीन कीता, बिठल विच लीन कीता और लीन करदिया करदिया एक दिन आप सिर्फ मानसिक तौर ते नहीं शरीरक तौर ते भी उस बिठल विच लीन हो गए, उस प्रभु विच लीन हो गए और लीनता ऐसी हुई सूरज किरण मिले जल का जल हुआ राम, ज्योति ज्योत रली संपूर्ण थिया राम।
1: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
2: The Surrey Crime Prevention Society is looking for new volunteers. Report suspicious activities in your neighborhood with the Citizens Community Safety Watch program, or take part in community safety tours by observing local malls, parks, transit hubs, rec centers, and libraries. Help keep our roads safe with the Speed Watch program, or adopt a street and help our neighborhoods become anti-graffiti communities. The Surrey Crime Prevention Society also needs volunteers for the office, special events, youth mentors, and students. PreventCrime.ca, an initiative of Pulse FM Cares.
3: 107.7 Pulse FM is a proud supporter of the Starfish Pack program in Surrey. Every Thursday, volunteers from the Lower Mainland get together to help pack two ready-made breakfasts, lunches, dinners, and snacks into a backpack to be delivered to hungry children on Fridays. These kids are then able to enjoy the nutritious and delicious food with their families over the weekend and be healthy and ready for school on Monday. The Surrey Starfish program is currently seeking donations and volunteers to help families in need. If you're interested in helping out, head to starfishpack.com. An initiative of Pulse FM Cares.
4: Need help navigating our ever-changing real estate market? Gerdale Baud of RE/MAX Real Estate Services is among the top 1% of all Lower Mainland realtors. Whether thinking of buying or selling residential properties, commercial properties, or farmland, call the agent with 30 years of experience to help you. Gerdale Baud, your realtor for life. Call Dale at 604-303-7653 or go online at GerdaleBaudGroup.com.

ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿੱਚ ਆਏ ਅਨੇਕ ਭਗਤ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਜੈਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਅਸਥਾਨ ਹੈ। ਅਨੰਤ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਅਨੰਤ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਜੈਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਨਾਮਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜਨਮੇ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਭੀਮ ਭੇਰੂ ਸੀ ਔਰ ਆਪ ਠੇਠ ਬੰਗਲਾ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਾਹਿਰ ਸਨ। ਵਿੱਦਿਆ ਆਪਣੇ ਸੰਸਕਾਰ ਚੁੰਕੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਔਰ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਮਹਾਨ ਪੰਡਿਤ ਬਣੇ। ਸਮਸਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਨੇ ਭਗਤੀ ਭਾਵ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਛੱਡੀਆਂ। ਆਪ ਗ੍ਰਸਤੀ ਸਨ। ਆਪ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਨਾਂ ਪਦਮਾਵਤੀ ਸੀ। ਸਮਸਤ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਰਟਨ ਕਰਦੇ ਆਇਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਭਗਤੀ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਆਇਆ, ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਰਹੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਸਨ ਤੇ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਲੋਕੀ ਗੀਤ ਸੰਗੀਤ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਵਿਰਾਸਤ ਚੋਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਗੀਤ ਤੇ ਸੰਗੀਤ। ਆਪ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ, ਜਿਸ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਹੈ ਗੀਤ ਗੋਵਿੰਦ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰੋਜ਼ ਉੱਠ ਕੇ ਗੀਤ ਗੋਵਿੰਦ ਦੀ ਛੰਦਾਬੰਦੀ ਕਰਨੀ, ਲਿਖਣਾ, ਇਹ ਆਪ ਦਾ ਰੋਜ਼ਮਰਰਾ ਦਾ ਕਰਮ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਆਪ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਪੰਡਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਸਾ ਹੋਇਆ ਜਦ ਗ੍ਰੰਥ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਣ ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪ ਦੀ ਲਿਖਣ ਸ਼ਕਤੀ ਕੁੰਦ ਹੁੰਦੀ ਗਈ। ਜਦਕਿ ਪੰਡਰਪੁਰ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਨੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਤਮਾਮ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ, ਭਗਤ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਲਾ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਬਿੱਠਲ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੀਤ ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਮ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਗੀਤ ਜੋ ਭਗਤੀ ਰਸ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ, ਭਗਵਤ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਦੋ ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਏ, ਗੀਤ ਗੋਬਿੰਦ ਦੇ ਵੀ ਸਿਰਫ ਦੋ ਛੰਦ ਰਹਿ ਗਏ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਆਪ ਲਿਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਜੈਦੇਵ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਗੀਤ ਦੀ ਲੈਣ ਨਾ ਆਈ ਤੇ ਕਲਮ ਲਿਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰਥ ਹੋਈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੌਣੀ ਵਿੱਚ ਇੰਜ ਕਲਮਬੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤ ਜੈਦੇਵ ਕਰ ਗੀਤ ਗੋਵਿੰਦ ਸਹਿਜ ਧੁਨ ਗਾਵੇ, ਲੀਲਾ ਚਲਿਤ ਵਖਾਣ ਦਾ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਠਾਕੁਰ ਭਾਵੇ, ਪਰ ਅੱਖੜ ਇੱਕ ਨਾ ਅਵੜੋ ਬਨ ਪੁਸਤਕ ਸੰਧਿਆ ਕਰ ਆਵੇ, ਰੋਜ਼ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਨਦੀ ਤੱਟ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੇ ਨਿਤਨੇਮ ਤੋਂ ਫਾਰਗ ਹੋ ਕੇ ਲਿਖਦੇ ਸਨ ਔਰ ਜਦ ਕਾਫੀ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਜਦ ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਆਪ ਇਸ ਗੀਤ ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਮ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਸਿਰ ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਘਰ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸਨ ਔਰ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੇ ਕਰਮ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਗੂਲ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਨਿਰਾਸ਼ ਲੋਟੇ, ਅੱਜ ਪੰਕਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਗੀਤ ਗੋਬਿੰਦ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪਰ ਦਿਨ ਵੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਰਹਿ ਗਿਆ ਔਰ ਗੀਤ ਗੋਬਿੰਦ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦੋ ਪੰਕਤੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਜੋ ਸ਼੍ਰੀ ਜੈਦੇਵ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਉਭਰਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਕਲਮ ਲਿਖਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰਥ ਹੈ। ਐਸੀ ਇਹ ਕੋਈ ਗੈਬੀ ਲੀਲਾ ਵਰਤੀ, ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਜਦ ਘਰ ਲੋਟੇ ਤਾਂ ਆਪ ਨੇ ਪਤੀਵਰਤਾ ਸੁਪਤਨੀ ਪਦਮਾਵਤੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਾਰਨ, ਤਾਂ ਜਦ ਸਾਰਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ
तो पति दे दुख देच पत्नी भी शामिल हुई। और यह हकीकत है जब कोई महान दार्शनिक महान कवि किसे उलझन देच फसदा है और उस तो किसे समस्या का समाधान नहीं आता या उसके दिमाग देचों गीत दिया लहरा नहीं निकल दिया तो जेडिया उस वक्त पीड़ा ते तकलीफ दर्द उसके हिरदे विच पैदा होता है ये वो कभी ही जानता है ये वो ही दार्शनिक ही जानता है। तो काफी दुखी ते चिंतातर मन नाल रात नु सौं गए। आज जैसे सवेरे उठे ते आपने रोजमर्रा दे कर्म दे मुताबक ग्रंथ चुकया पर पत्नी ने आख्या नहीं तुसी पहले जाओ नदी तट ते इशनान करो। रोजमर्रा दे ब्राह्मण दे जड़े कर्म ने उन्हों निभाओ प्रभु भक्ति करो नितनेम करो फिर इस ग्रंथ नो लिखण दी कोशिश करो। ओ गैबी शक्ति रखण वाले परिपूर्ण परमात्मा आप बख्शिश करनगे आप रहमत करनगे। केंद्र ने पत्नी दी ये गल मन चिंतातुर मन दे नाल श्री जयदेव नदी तट दी तरफ जा रहे ने सोच दे आया कि कोई लैन कोई पंक्ति दिमाग दे चों उभरे पर कुछ उभर दी दिखाई नहीं देंदी। आज हिरदा ऐसा अमावस दी रात बने आया है जिदे च कोई चमक दाया मामूली जिया तारा भी नहीं स्यारा भी नहीं। कहिंदे ने इधर जयदेव रुखसत होए नदी तट दी तरफ भाई साहब भाई गुरदास जी कहिंदे ने गुण निधान घर आए के भगत रूप लिख लेख बनावे। जयदेव दा ही कोई रूप धारण करके जयदेव दे घर आया ते गीत गोविंद दियां दो पंक्तियां लिख दित्तियां सुनहरी स्याही दे च लिखियां जबकि सारा ग्रंथ काली स्याही दे च लिखिया। लिखदे आया जद पद्मावती ने वेख लिया तां ओ भज्जी होई आई ते कहन लगी रस्ते च ही वापस आ गए इशनान नहीं कीता नितनेम नहीं कीता बंदगी नहीं कीती तां जयदेव जो वास्तविक गुण निधान प्रभु आप सन कहन लगे पंक्ति फुर गई सी लिखण लई वापस आ गया। ग्रंथ संपूर्ण हो गया ग्रंथ मुकम्मल हो गया। गीत गोविंद संपूर्ण करके अलोप हो गई ए अगम्मी शक्ति पद्मावती भोजन बनाने दे चलेन। इतनी देर दे श्री जयदेव जी महाराज नदी तट तो इशनान करके वापस आए गोविंद गोविंद दी धुन गीत अलाप दे हैं। घर विच प्रवेश होंदे हैं की देखते ने पत्नी भोजन छक रही है ते जयदेव कहंदे ने मैं ब्राह्मण होके कुछ दिन नित दे कर्म भुल गया सी पर तू भी भुल गई मैनू खिला के ही तू खांदी होंदी सी अज की हो गई बहुत भुख लगी। कहन लगे नहीं तुसी ग्रंथ संपूर्ण कीता ना थानू बहुत खुशी हुई सी ते उस खुशी खुशी च मैं थानू भोजन छकाया है पर हुण खुशी इतनी प्रबल है कि थानू छकिया होया भोजन भी याद नहीं रहा। जयदेव सुन के दंग रह गया हैं मैं भोजन छकिया और गीत गोविंद संपूर्ण हो गया है। हां संपूर्ण हो गया तुसी खुद ते कहे और वो दो लाइना तुसी सुनहरी स्याही दे नाल लिखिया ने मैं खुद वेखिया ने। भज्जे हुए जयदेव गए ग्रंथ नू खोलदे ने वाकई ग्रंथ संपूर्ण दो पंक्तियां सुनहरी स्याही नाल लिखिया गया ने अखर पर प्रतीत कर होए विस्माद ना अंग समावे। जैसे उस पंक्ति नू पढ़दे ने विस्माद घर दे चले गए अश्चर्यता ते रहस दे चलीन हो गए एकदम आप ते सुरूर तारी होया। अरदास की थी हे त्रिभुवन धनी हे परिपूर्ण परमात्मा
तू मेरे दिमाग विच ही थोड़ी शक्ति पा देंदा ते मैं आप लिख लेंदा। ये खेचलां तुसी क्यों कीतियां? ता कहिंदे अलहाम होया, आकाशवाणी होई, अंतर आत्मा बोली, जय देव जान बुझ के असी तेरे दिमाग विच ये कमी पाई, खुद लिखियां ताकि तेनू किधरे अहंकार ना हो जाए कि इतने वड्डे ग्रंथ दी रचना मैं कीती है, इसका करता मैं। ते जद भी किसी भगत नू इस प्रकार का अहंकार हो जाता है ते अपने आप नू करता मन लैंदा है, मेरे नालों उसका संबंध टुट जाता है। ते तू मैनू इतना प्यारा लगे है, मैं नहीं चाहता सी कि तेरे ते मेरे विच कोई वित होवे। बार बार धन्यवाद दे नाल भरे जयदेव अश्कबार हो, बार बार सजदे छोए, हे प्रभु लख लख तेरा शुक्र। आज पता चलिया जो मैं बोलदा वो तेरी शक्ति, जो मैं वेखदा वो तेरी शक्ति है, जो मैं चलदा ये भी तेरी शक्ति है, जो मैं करदा ये भी तेरी ताकत है, और जो मैं सोचदा हे प्रभु ये भी तेरी शक्ति है। वास्तविक मेरे रोम रोम विच तू ही काम कर रहे हैं, तू ही वसे हैं, तू ही रमे आया। श्री जयदेव जी महाराज का यह गीत गोविंद नामक ग्रंथ भगतां दी दुनिया च बहुत ही प्रसिद्ध है और इनू पढ़ पढ़ के भगत जन आनंद लेंदे ने। गीत गोविंद दे कुछ हिस्से बकायदा प्रकाशित हो चुके ने और इन्हां गीतां विच भक्ति भाव ज्ञान वैराग सब कुछ दैवी गुण समो दिते ने भगत श्री जयदेव जी महाराज ने। गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज विच आपदा एक संस्कृत विच बड़ा ही सुना पदा उचारण किया होया है जो गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज विच गुजरी राग दे अंदर दर्ज है। इस पदे दियां अस्थाई पंक्तियां ये ने, केवल राम नाम मनोरमंग बद अमृत तत्मयंग, हे मन केवल राम नाम दा रमण कर ते उस दे ही अमृत स्वरूप दा पान कर। राम कौन, राम कैसा है, किस राम दा अमृत पान करिए, किस राम दा चिंतन करिए, किस राम दे सुरतलीन करिए, तो उस राम दी याद तशरीह कर देने, उस राम दी आप व्याख्या कर देने। इस पदे विच परमाद पुरख मनोपिमंग सत्याद भाव रतन परमद्भुतन परकृत परन जद चिंत सर्वगतन। परमाद जो परम आद है, अनादि है, जिसदा मूल नहीं लभ्या जा सकदा और जो सब दा मूल है, जिदी बुनियाद दा कोई पता नहीं, जो सब दी बुनियाद है, जो सब दी जड़ है, जो सब दा आधार है, ऐसा जिड़ा ब्रह्म है वो अनादि है। परमाद पुरख वो फिर पूरे होया है। पुरख तो मुराद पुरी पुरी बसंता सा पुरखा, जो पुरिया पुरिया विच रमे आया है, व्यापक है, वो पुरख है। परमाद पुरख मनोपिमंग मनोपमा तो रहत है। दरअसल मन अपने अनुभव विच पूर्ण तौर ते परमात्मा नूं नहीं लिया सकदा। मन पूर्ण तौर ते जिसनूं सोच नहीं सकदा, मन जिसकी पूर्ण तौर ते कल्पना नहीं कर सकदा, ते जिसकी मन ही कल्पना नहीं कर सकदा, उनूं जबान नाल कथन करना ते बहुत औखा, उनूं अखां नाल ते वेखना बहुत औखा। क्यों? कि अखां जिथों तक वेखदियां ने उस तो भी अगे की कल्पना मन कर सकता है। जबान जिथे तक कथन करती है उत्थों तो भी अगे की कल्पना मन कर सकता है। कन जिथे तक सुन सकते ने उस तो भी ज्यादा कल्पना मन कर सकता है। कल्पना की प्रवास बड़ी बुलंद है, कल्पना बहुत दूर तक चली जाती है, पर श्री जयदेव जी महाराज कहते ने चाहे कल्पना की प्रवास कितनी उच्ची क्यों ना हो, कितनी दूर की क्यों ना हो, कितनी गहरी क्यों ना हो, फिर भी परमात्मा मेरी कल्पना विच नहीं आउंदा। वो किसी दी कल्पना विच नहीं आउंदा, मन दी सोच तो परे, मन दी विचार तो परे। इस वास्ते आप कहंदे मनोपमंग मनो उपमा तो रहत है।
परमाद पुरुख मनोपिमन सत आदि भाव रतन ओ सत चित आनंद आदिक भावा दे नाल रथ आया है। ओ सत है, ओ चित प्रकाशमयी है और ओ आनंद स्वरूप है। एक पंक्ति देच राम दी व्याख्या इंज कर देने, परमाद पुरुख मनोपिमन सत आदि भाव रतन परम अद्भुतन परम अद्भुत रूप है, परम आश्चर्य रूप है। मनुख उत्थे आश्चर्य हो जांदा है, हैरान हो जांदा है, विस्माद हो जांदा है, जिन्हू वेखे ते पूरा वेख ना सके, जिन्हू सोचे ते पूरा सोच ना सके और जिसनू चखे ते पूरा स्वाद ना मान सके, फिर भी वो बच रहे जिन्हू सुने ते फिर भी पूरा ना सुन सके, उत्थे विस्माद दा तारी होना कुदरती गल है। उत्थे आश्चर्यता ते रहस्य दा पैदा होना कुदरती गल है। कहिंदे ने एक बच्चा रहस्य दे च जीवदा है, एक कवि रहस्य दे च जीवदा है, एक संत रहस्य दे च जीवदा है। अजोका समा चूंकि इस ढंग दा बतीत हो रहा है कि हर मनुख ऐसा कहिंदा मैं सब कुछ जानदा, चाहे कुछ भी नहीं जानदा, मैं ते सब कुछ वेख लिया, मैं ते सारा सुन लिया, मैं उसनू पूर्ण तौर ते सोच लिया। अगर ऐसा कोई दावा करे तो आश्चर्यता नहीं पैदा होंगी, रहस्य नहीं पैदा होंगा, विस्माद नहीं पैदा होंगा। इस तरह का दावा करने वाले अजोके समय च बहुत ज्यादा ने, क्योंकि अज के समय च जितने कॉलेज ने जितने विद्यालय ने ये पहले नहीं सी। अजोकी विद्या ने भावे कुछ दिता है या नहीं, लेकिन रहस्य नु खत्म जरूर किया है, विस्माद नु खत्म जरूर किया है। मनुख दी दुनिया विच जो एक विस्माद सी, रहस्य सी, वो खत्म हो गई, वो अज देखण नु नहीं मिलता। हां बच्चे कोल ए विस्माद है, अजे अबोध है, उसका विस्माद अबोध अवस्था ते खड़ा है, अचेत अवस्था ते खड़ा है। फिर कवि कोल विस्माद है, या इन कह लो कविता दा जन्म ही विस्माद तो होंदा है, कविता दा जन्म ही रहस्य तो होंदा है। तो कवि रहस्यवादी होंदे ने, संत रहस्यवादी होंदे ने, वो जो कुछ भी वेखदे ने वो ऐसा महसूस करदे ने कि एक रेत दे जर्रे नू भी पूर्ण तौर ते वेखना बड़ा औखा है, क्योंकि वह भी अपने विच बहुत कुछ छुपाई बैठा है, बहुत कुछ छुपाई बैठा है। सूरज नू ते पूर्ण तौर ते देखना बड़ा कठिन है, पर एक जर्रे नू भी पूर्ण तौर ते देखना बड़ा कठिन है। एक दरखत नू ते पूर्ण तौर ते देखना बड़ा कठिन है, पर एक पत्ते नू भी पूर्ण तौर ते देखना बड़ा कठिन है। उहदे विच भी बहुत कुछ छुपिया होया है, बहुत कुछ गुप्त है, बहुत कुछ सूक्ष्म है। तो जैसे ये बोध होंदा है कि बहुत कुछ सूक्ष्म छुपिया होया है जो मैं नहीं देख सकता, बहुत कुछ अदृश्य है, तो रहस्य पैदा हो जाता है। फिर विस्माद मंडल तारी हो जाता है, तो कवि विस्माद विच जीवदे ने, संत विस्माद विच जीवदे ने, भगत जयदेव जी महाराज कहते ने परम अद्भुतन ओ परिपूर्ण परमात्मा परम आश्चर्य रूप है, परकृत परम ओ प्रकृति तो परे है। कहते ने रविंद्र नाथ टैगोर सागर तो इशनान करके वापस आ रहे हैं, रस्ते देच एक गंदगी दा ढेर पिया है, सवेर दा वक्त है, सूरज दिया किरणा उस गंदगी दे ढेर नू छू रही ने। ये सारा दृश्य वेख के रविंद्र नाथ टैगोर नच उठे, कहन लगे हे प्रभु तेरी आश्चर्यता जो मेरे ते अज प्रगट हुई है वो ये कि मैं तेरी निर्लेपता दा ज्ञान हासिल कर ले। सूरज दिया किरणा गंदगी नू छू रही ने, फिर भी किरणा गंदियां नहीं हो रही, फिर भी सूरज गंदा नहीं हो रहा। तू मेरे गंदे शरीर दे रोम रोम विच बैठा है, फिर भी तू गंदा नहीं है, तू निर्लेप है, प्रकृति तो परे है, सब कुछ ते विच है, सब कुछ ते दूर है, सबके मत सबों ते बाहर, सारियां देश तू है पर फिर भी सारियां तो बाहर है, निर्लेप है। तो श्री जयदेव जी महाराज कहने ने परम अद्भुतन परकृत परन जद चिंत सर्वगतन, जिसका चिंतन करण दे नाल
सर्व प्रकार दियां गतियां प्राप्त हो जांदियां। हर पासे दी गति मनुख कर लैंदा है, भाव हर पासे मनुख दी पहुंच हो जांदी है, सब कुछ मनुख प्राप्त कर लैंदा है। इस वास्ते ऐसा जो परमात्मा है, प्रमाद पुरुख मनोपिमंग सत्यादि भाव रतन परमद्भुतन परकृत परन जग चिंत सर्वगतन केवल राम नाम मनोरमंग बद अमृत तत्मयन। ऐसा जो अमृतमयी राम है, परमात्मा दा नाम है, उसनु तू पान कर, उसने ही अमृत स्वरूप दा जो है तू आनंद मान। अगा चल के इसे ही पद विच श्री जयदेव जी महाराज कहंदे ने कि नदनोद जस सिमरणे न जन्म जराद मरण भयं, नहीं आउंदा जिहदे सिमरन करन

है पूर्ण तौर पे सोच नहीं सकता, हाथ पैर हैगे ने पूर्ण तौर पे कुछ कर नहीं सकते, चल नहीं सकते। इस वास्ते वृद्धावस्था नु पूर्ण वृद्धावस्था नु रोगमयी अवस्था करके आख्या। तो श्री जयदेव जी महाराज कहने जेदा सिमरन करन दे नाल नहीं आउंदा जन्म दा दुख मरण दा दुख, क्योंकि मुड़ के जमना ने तो फिर मरना ही नहीं, ते नहीं आउंदा बुढ़ेपे दा दुख। साहिबगुरु अर्जन देव जी महाराज भी फरमान करते ने, रोग सोग दुख जरा मरा हर जने नहीं निकटानी, हरीदा जो जन है ओदे नेड़े ए जन्म मरण ते बुढ़ेपा जरा नहीं आउंदा। इत्थे एक तरक खड़ी होवेगी, चलो जन्म मरण तो भगत बच जांदा है, पर बुढ़ेपे दे रोग तो किस तरह बचता है। एक पंक्ति है गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दे, गुरमुख कदे बुढ़े नाई जिन अंतर सुरत ज्ञान। जिद्दी सुरत प्रभु नाल जुड़ी हुई है, जिथे आत्म ज्ञान मौजूद है, ऐसा बंदा चाहे शरीरक तल ते वृद्ध भी हो जाए पर ओदियां उमंगा हुलास दे कोई फर्क नहीं पैंदा, ओदी चेते शक्ति दे कोई फर्क नहीं पैंदा, उसके चेहरे दे उत्ते ताजगी बनी रहिंदी है, उसके चेहरे दे उत्ते आनंद बनिया रहिंदा है। उन्हूं वेख के कोई ऐसा नहीं कह सकता कि बुढ़ा हो गया, वृद्ध हो गया है, एक कमजोर हो गया है, नहीं, उसका हुलास, उसकी उमंग, उसकी तुरंग और उसकी चेते शक्ति पूर्ण तौर पे कम कर दिए, प्रभु की बंदगी का एक महान फल है। इस वास्ते आत्मदर्शी पुरुषा ने कहा है कि नाम सिमरन करने वाले दे कोल बुढ़ेपे का रोग भी नहीं आता, रोग सोग दुख जरा मरा हर जने नहीं निकटाने। श्री जयदेव जी महाराज इस पावन पवित्र पदे देच फरमान कर देने, ना दनोद जस समरेन ना जन्म जराद मरण भयं, इच्छस जमाद परा भयं जस्वस सुकृत कृतन। जे तेनु इच्छा है ए बंदे कि तू जमा दा तिस्कार करे, जन्म मरण तो बचे, ता जस सुकृत उस परिपूर्ण परमात्मा दा जस गायन कर, जसवस सुकृत कृतन शुभ कर्म कर, ते परिपूर्ण परमात्मा दा जस गायन कर। भाव परमात्मा दा जो जस है यही सुकृत है, यही पूर्ण तौर ते शुभ कर्म है, इसनु तो कर्म, इसे एक शुभ कर्म तो अनेका शुभ कर्म जन्म लेंदे ने, अगर ये एक शुभ कर्म नहीं तो फिर कुछ भी शुभ नहीं है। शुभ कर्म वो है जब हिरदा शुभ दे नाल जुड़दा है तो शुभ परमात्मा है, शुभ ईश्वर है। जब शुभ का चिंतन किया जाता है तो हिरदा शुभ हो जाता है, ते जैसे हिरदा शुभ होता है ऐसे ही मनुख शुभ चिंतक बन जाता है, वो हर एक की शुभ कामना करता है, वो हर एक का शुभ चिंतक बनता है। पर शुभ होए बिना शुभ चिंतक होना बहुत कठिन है, शुभ होए बिना शुभ कामना करनी बहुत औखी है, कामना मैलियां होनगियां और चिंतक चिंतन जो है माड़ा ही जो है चलेगा। तो परिपूर्ण परमात्मा का कल्याणकारी नाम, उसका जो शुभ कर्म है उसका चिंतन ओ तो कर। इच्छस जमाद प्राभयं जस्वस सुकृत कृतं भवभूत भाव समभ्यं प्रसन्न परमन प्रसन्न मिदन। श्री जयदेव जी महाराज कहते हैं जो त्रैकालदर्शी है और एक सार परिपूर्ण जो रमे आया है, व्यापक है, भवभूत भाव समभ्यं जो हुण भी है पहले भी सी अगावी जो है होवेगा, जो हर समय मौजूद है, त्रैकालदर्शी है, भवभूत भाव समभ्यं परमन प्रसन्न मिदन जो अत्यंत प्रसन्न चित्त है, जो अत्यंत परम आनंद दे चलीन है, तो उसका ही कल्याणकारी जस उच्चारण कर। यही शुभ कर्म है, यही शुभ चिंतन है। अगां चल के श्री जयदेव जी महाराज फरमान कर देने, हर भगत निज नह केवला रिद कर्मणा बचसा, हरीदा भगत मन बाणी शरीर करके प्रभु नाल जुड़े हुए है। ऐसा जो हरीदा भगत है, हर भगत निज नह केवला रिद कर्मणा बचसा, जोगेन किंग जगेन किंग दानेन किंग तपसा। ऐसा जो भगत है जो मन करके शरीर करके बाणी करके प्रभु विचलीन है, ओदे सामने जग तुच्छ है, जोग साधना भी तुच्छ है, और ऐसे भगत दे सामने दान भी कोई मायने नहीं रखता। भाव दानी तो भी ओ भगत उच्चा है, जोगी तो भी ऐसा भगत उच्चा है,
और जग करने वाले

अगे रथवा। गदकोड़ माया जीवन का लक्ष्य बन जाए तो तृष्णा उसकी प्राप्ति का साधन बनती है। तृष्णा लोही नहीं तो फिर तरह तरह के पदार्थों की प्राप्ति किवें करेगा? संतुष्ट है तो प्राप्त कर भी नहीं सकता। तृष्णा झूठ नूं प्राप्त करने का साधन बनती है, उपराला बनती है। कूड़ किसनों कहते ने जो दिखाई भी देवे, प्रभावित भी करे ते पकड़िए हथों निकल जाए। जगत स्थिर नहीं है, अस्थिर है, सब कुछ चलायमान है। इस वास्ते इसनों कह देता है कूड़ झूठ। कूड़ मैया कूड़ बीबी खप होए खार। धन गुरु नानक देव जी महाराज से कहने ने सब कुछ कूड़ ही कूड़ है। क्यों किस नाल की जय दोस्ती, सब जग चलन हार। किसनों पकड़िए सब कुछ चलायमान है। न इथे दिन टिके होया है, न इथे रात टिकी हुई है, न इथे बचपन टिके होया है, न इथे जवानी टिकी हुई है, न इथे बुढ़ेपा टिके होया है। दिन नहीं टिकया, रात नहीं टिकी, जीवन नहीं टिकया तो फिर कुछ भी टिकया होया नहीं है। सब कुछ चलायमान है। जो चल रहे होवे ते चलायमान होवे उसे नु कह देंदे ने चंचल। समस्त संसार चंचल है, पकड़न की कोशिश करांगे हथों निकल जाएगा। दिन नु पकड़न की कोशिश करिए गया, रात नु पकड़न की कोशिश करिए गई। इस तरह जवानी नु पकड़न की कोशिश करिए हथों निकल जाएगा। जीवन हथों निकल जाता है। जो हथों की पकड़ दिश ना आवे, जैसे पवन नु पकड़न की कोशिश करिए ते हथां दे बंद करिए, मुट्ठी दे बंद कर दें हवा निकल जाती, पवन गई। जो पकड़ दे चना आवे, चलाए मान है, उसनु चंचल आखे है, उनु कूड़ आखे है। पर जीवन दा लक्ष्य कूड़ होवे, जीवन दी प्राप्ति लक्ष्य कूड़ होवे, बस ए कूड़ चाहिदा है, यही संसार चाहिदा है। तो फिर संसार अगर लक्ष्य है तो तृष्णा ही साधन बनेगी, लोभ ही साधन बनेगा। धन गुरु नानक देव जी महाराज से फरमान पे कर देने, वाकई ये युग लोभी युग है, बड़ा परबल लोभी युग है। हर समय जिसके अंदर देण की भावना होवे ते दे के खुश होंदा होवे, गुरबाणी कहिंदी है गुरमुख है। पर हर वक्त लैण दी भावना होवे ते लै के खुशी मिलदी होवे, बस उसे नु आखिया गया है लोभी। बड़ी कीमती पंक्ति है, दित्ते नालों लिता चंगा मनमुख एवें जानी। किस तरह जाणोगे मनमुख है, जिसकी सारी खुशी लैण दे खड़ी है। जद किधरे देना पै जाए औखा होंदा है, दुखी होंदा है, परेशान हो जाता है। पर जिथों किधरे लैणा पै जाए और मिले खुश होंदा है, प्रसन्न होंदा है। लैणा खुशी है, देना दुख है, ये लोभी दे लक्षण है। हथों देखे भला मनाए, देख के खुशी आती है, देख के प्रसन्नता आती है। और जिसनों दिता जाता है उसका भला भी मंगता है। ऐसी मनोवृत्तियां ने तो ऐसा जीव महान है। उसकी जिंदगी का लक्ष्य देन दे चाहे, और जे लैन दे चाहे तो लोभी। अगर कूड़ झूठ पदार्थ संसार ही

आप ही तो शब्द अर्थ शास्त्र जी शब्द कुछ अखरां नूं जोड़ के शब्दाबंदी दे अंदर जो बनाए जाण उन्हों भी शब्द कहिंदे आ, जो रसना तो निकले वह भी शब्द, जिहड़ा गुरु साहिब जी ने बख्शिया उपदेश उन्हों भी शब्द कहिंदे आ। शब्द का अर्थ ब्रह्म भी है, शब्द का अर्थ भाई संसार भी है, पर जथा प्रकरण तथा अर्थ प्रकरण की है। जे साहिब जी बाज शब्द उड़ान दे नाल आ गया तो आकाश रहने वाले पंछी का वाचक, जे बाज दे उत्ते काठी पा दिती है तो समझ लो घोड़े का है। बाज शब्द एको ही है, घोड़े का अर्थ भी देंदा है ते पंछी का अर्थ भी देंदा है। जिहड़े लोग कहिंदे एक शब्द का एको ही अर्थ होना चाहिए, ऐसे भेद उन्हां नूं शंका करन तो पहला जानने चाहिए। सो इउं साहिब जी शब्द का अर्थ इत्थे आपां लैंदे हां ब्रह्म, जो सतगुरु महाराज कहिंदे ने हे मेरे परमेश्वर तू शब्द कहिए ब्रह्म रूप है। ब्रह्म की है? ब्रह्म का अर्थ है व्यापक, तू सारी जगह व्यापक है, तू आप ही ब्रह्म व्यापक रूप भाव निराकार जिहदा कोई आकार नहीं, ते आप तो निराकार आकार वाली चीज विनसदी है, इसलिए वह विनसदा नहीं। दृष्टमान है सगल मथेना मिथे है, जो दिसद देहां दिसदियां मिथ्यान, सत वस्तु दिसदी नहीं। सो इस करके ना तू आप ही निर्गुण है। निर्गुण तो भाव कि तेरे विच ना राजगुण ना सतगुण ना तमगुण, तिने गुणा का कोई प्रभाव नहीं। निर्गुण आप पर नाल ही कहता सरगुण भी ओही। निर्गुण ते सरगुण दृष्टारंग, तू निराकार तो जो आकार रूप धारण करता है ते हे मेरे परमेश्वर आप ही शब्द आप ही निराकार है ते आपे निशान। निशान का अर्थ है प्रगट, प्रगट ता होगा जे सरगुण स्वरूप धारण करूगा। तू आप ही सरगुण स्वरूप धारण कर लेना। सहस्तव नैन नन नैन है तोहे को, सहस्तव नैन नन नैन है तोहे को। यह साहसंग जी एक निराकार ते एक साकार वाले परमात्मा ते सरगुण स्वरूप करके हजारे तेरिया अखा, निराकार करके तेरी अख भी अख नहीं है। ऐसा परमेश्वर आश्चर्य रूप है, ना संखंग ना चक्रंग ना गदा ना स्यामंग, आश्चर्य रूप है उसका। ते तू आप ही निर्गुण स्वरूप ते आप ही सरगुण स्वरूप हो करके निशान किए प्रगट हो जाना है। ते आपे हर एक रंग है, आपे बहु रंगी, आप ही अनेक रंगा च है। आप ही महाराज तो एक रंग दे अंदर है, खेल खेल अखेल खेलन अंत को फिर एक, आप ही एक स्वरूप है। आप ही शब्द हे मेरे परमेश्वर वाहिगुरु जी, ते आप ही तुसी निरंकार निराकार स्वरूप हो, ते आप ही मेरी रसना ते शब्द रूप बन रहे हो, जिन्हां द्वारा सिखां दी कल्याण होएगी। जिहड़े गुरबाणी दे शब्द न, वाह वाह बाणी निरंकार है, यह निरंकार का स्वरूप है। महाराज कहिंदे सतगुरु शब्द शब्द है सतगुरु पद्र मुक्त जनाब है को, आप ही तुसी शब्द रूप हो, मेरी ते रसना का एक बहाना है। जैसी मैं आवे खसम की बाणी, ये बाणी दे शब्द तुसी आप ही रूप धारण कर रहे हो मेरी रसना तो, ते आप ही निशान कहिए प्रगट हो रहे हो मेरी रसना तो, ते आप ही निराकार हो, आप ही श्री गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी रूप हो करके साकार रूप हो रहे हो, आप ही मेरे निरंकार जी, मैं ते तुहाडे कौतुक वेख रहा। ये बेनती सतगुरु महाराज गूढ़ गल भी करते है ते सिखां नूं बाणी ते भावना अपने शरीर नालों वध जोड़न वास्ते, क्योंकि देह मिथे है। सतगुरु ने कदे नहीं कहा कि मेरी देह ते विश्वास करो, सतगुरु ने कहा शब्द ते विश्वास, शब्द दे नाल जोड़िया, शब्द नूं गुरु मन्निया। इसे लई सतगुरु महाराज सचे पातशाह दे किते व्याह कारज दी रीत दी गल वेखो विचार के, ते जिस वेले सतगुरु महाराज सचे पातशाह दा विवाह होण लगा उते पंडित ने वेदी गड्डी होई है ते अग वाली होई है, परिक्रमा करन वास्ते अग दे दुआले फेरे करदे है। महाराज कहिंदे पंडित जी ये की कीता है? कहिंदे जी फेरियां दी रीत ही ऐसी है, कोई नवीं गल थोड़ी कीती है मैं। कहिंदे नहीं, इहनूं अग नूं बुझा दिओ। इन्नी गल कहण तों महिता कल्याण चंद जी बजुर्ग बाबा

सौ साल भी नहीं भूलते। मैं श्योर हूँ कि ये मुझे मारेंगे। मैंने इंदिरा जी को ये इल्हाम था कि मारेंगे और उन्होंने मारा। जनरल वैद्या को उन्होंने पुणे में जाके मारा। जनरल डायर को लंदन में जाके मारा। इन कौमों की पेशेंस का टेस्ट

0: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
1: ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਇਹ ਤੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਕਲੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 18, 10, 20 ਤੱਕ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਸਰਬ ਕਲਿਆਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਲਿਆਣ ਰੂਪ ਬਾਣੀ ਹੈ। महाराज बख्शिश करदे हन सर्व रोग का अवखद नाम। अज संसार वल जाति पाईए हर मनुख नू कोई ना कोई दुख लग्या होया। महाराज बाणी विच भी इस संसार दी हालत नू दसदे हन कि जिस मनुख पै करो बेनती सो अपने दुख भरिया। हर मनुख नू कोई ना कोई दुख लग्या होया। किसे दा कार विहार नहीं चलदा, किसे दे कार तो दुख नहीं निकलता, किसे नू मुकदमा पै गया, किसे दे कार औलाद नहीं होई तां दुखी है, जे औलाद है तां हुकम विच नहीं है ओ तां दुखी है। अनेक तरह दे होर दुख हन। इना सारिया ही दुखां दा जो दवा है औषधि है महाराज बख्शिश करदे हन सर्व रोग का अवखद नाम। मेरा बैद गुरु गोबिंदा हर हर नाम अवखद मुख देवै काटै जम की फंदा। मेरा सतगुरु ऐसा बैद है कि मेरे तन दे रोग भी मिटा देंदा है, मेरे मन दे रोग भी मिट जांदे हन। केड़ी दवाई देंदा है, आख्या हर हर नाम अवखद मुख देवै। जदों नाम दी सिमरन दी दवाई गुरु ने मैनू बख्शी ना तो मैनू इस संसार दे दुखां दी तत्ती वा लगी, ना जमा दी तत्ती वा लगी। ऐथे ओथे आप परमेश्वर रखवाला हुआ। तो उस पवित्र बाणी विचों कुछ शब्द रख्या दे आप दी भेटा कर रहा। ए सर्व रोग दा नाश करन वाली बाणी, पर एक शर्त है, श्रद्धा प्यार सिदक दे नाल अमृत वेले जाग के इशनान करके ए बाणी पढ़िए ता फिर दुख नेड़े नहीं आ सकदे। आओ सारे गुरु की बाणी दा ए अभ्यास करिए, क्योंकि गुरु की बाणी ता है ही ऐसी।

पौड़े बिन सतगुरु कि ना पायो, बिन सतगुरु कि ना पाया। सतगुरु विच आप रखे उनकर प्रगटाक सुनाया। सतगुरु मिल गए सदा मुक्त है जिन विच हो चुकाया। उत्तम एहो विचार है जिन सच्चे सिंह चितलाया। जग जीवन दाता पाया, जग जीवन दाता पाया।

पौड़ी सेब की संतोखी जिन सचो सच त्याया ओनी मंदे पैर ना रखे उन कर सुख के धर्म कमाया ओनी दुनिया तोड़े बंदना अन्न पानी थोड़ा खाया तू बख्शी सी अगला नित देव चढ़े सवाया वड्याई वड्डा पाया वड्याई वड्डा पाया।

0: चौथ मोहल्ला पहला पर पर गड्डी लदिए पर पर भरिए साथ पर पर बेड़ी पाइए पर पर गड़िए खात पढ़िए है जेते वर्ष बस पढ़िए जेते मास पढ़िए जेती आर जा पढ़िए जेते सास नानक लेखे की गल होर हो में जखना जा
1: पहला लिखल पढ़िया ते ता कढ़िया बहुत ही सब पव्या ते तो लव्या

दुख दर उस रोग पे जा सुकाम न होई, तू करता करना में ना ही जाहो करी ना होई, बलहारी कुदरत वस्या तेरा अंत ना जाई लख्या रहाओ, जात में जो जो

0: तुम्हा पुरा तपे का सत गिर तुभा हो का जुगरा थगन का कूड़ा गैर तुभा हो।
1: पहला शाम कहे सितंबर समय सच में अच्छा सच रहे।

0: नील बस्त्र ले कपड़े पहरे सुरख पुठानी अमलकिया
1: चारे वेद होए सुचार पढ़े गुणे तीन चार विचार पाप भक्त करनी।

पौड़ सतगुरु विठों वारिया जित मेरे खसम संभालिया जिनका उपदेश ज्ञान अंजन दिया इन नेत्री जगत ने हालिया खसम छोड़ दूजे लगे डूबे सेवन जा रहा सतगुरु है बोहता विरलेख ने।

पौरी अपहिकरणा की ओकलप हित धारिय देख है कि अपना तर्क चिप की सारिय जो आया सो चलसी।

पूरी रब रहया सत्संग हजूरी जिसका साथ लिया मिलाए नानक भक्ति नाम समाए सो क्यों बिसरै जे काल न पानै सो क्यों बिसरै जे किया जानै सो क्यों बिसरै जिन सब किछ दिया सो क्यों बिसरै जे जीवन जिया सो क्यों बिसरै जे अग्न मह रखै गुरप्रसाद को बिरला लखै सो क्यों बिसरै जे बिखते काढ़ै जन्म जन्म का टूटा गांढ़ै गुरपूरै तत है बुझाया प्रभ अपना नानक जन त्याया साजन संत करो एहो काम आन त्याग जपो हर नाम सिमर सिमर सिमर सुख पावो आप जपो आप रह नाम जपावो भगत पाए तरिया संसार बिन भक्ति तन होसी छार सर्व कल्याण सुख निधना।

नेत्रोपेख दर्श सुख होए मन विकसै साध चरण धोए भगत जना कै मन तन रंग बिरला को पावे संग एक वस्त दीजै कर माया गुर प्रसाद नाम जप लया ताकि उपमा कही न जाए नानक रहया सर्व समाए प्रभ बख्शंद दीन दयाल।

जब आकार एहो कछ न दिसेता, पाप पुन तब कहते होता, जब तारे आपन सुन समाद, तब बैर विरोध किस संग कमात, जब इसका वर्ण चिन्ह

प्रभ केवल तनी तब बंद मुक्त कहो किस कहो गनी जब एक है हर आगमा पार तब नरक सुर्ग कहो कौन अवतार जब निर्गुण प्रभ सहज सुभाए तब शिव सक्त कहो कित ठाए जब आप है आप अपनी जोत तरै तब कवन निडर कवन कत डरै

जब पूर्ण कर्ता प्रभु सोए तब जम की त्रास कहो किस होए। जब अवगत अगोचर प्रभु एका तब चित्र गुप्त किस पूछत लेखा। जब नाथ निरंजन अगोचर अगाधे तब कौन छुटे कौन।

जब अपनी शोभा आपन संग बनाई, तब कवन माए बाप मित्र सुत पाई। जय सर्व कला आपे प्रवीन, तै वेद कतेब कहां को चीन। जब अपने आप उतारे, तो सगन अपसगन कहां विचारे। जय अपने ऊच अपने आप नेरा, तह कौन ठाकुर कौन कही है चेरा। विस्मन विस्म रहे विस्माद, नानक अपनी गत जान हो आप। जय अचल अछेद अभेद समाया, उहां किसह व्याप्त माया।

खेल संकोच तो नानक एक जय अवगत भगत तह आप जय पसवै पासार संत प्रताप दोह पाख का आप है तनी उनकी शोभा उनहु बनी आप है कौत करै अंध चोज आप है रस भोग निर्जोग जिस पावै तिस अपन ना इलावै जिस पावै तिस खेल खिलावै बेसुमार अथाह अगत अतो।

आत जो जो रचियो सुति सहते आत जिस पावे तिस लय मिलाए भगत कह हर के गुण गाए मन अंतर विश्वास कर मानिया करन हार नानक एक जानिया जन लागा हर एक नाए इसकी आस न बिरथी जाए सेवक को सेवा बन आई हुक्म बूझ परम पद पाई इसते ऊपर नहीं विचार जाके मन बसया निरंकार बंधन तोर पए निर्वैर आंदिन पूज है गुर के पैर हे लोक सुखिए पर लोक सुहेले नानक हर प्रभ आप है मेले साध संग मिल करो आनंद गुण गावो प्रभ परमानंद राम नाम तत करो विचार दुर्लभ देह का करो उदार अमृत बचन हर के गुण गाओ प्राण तरन का यह सुहाओ आठ पहर प्रभ पेखो नेरा मिटाया ज्ञान बिनसै अंधेरा सुनो उपदेश हृदय बसावो मन इच्छे नानक फल पावो हलत पलत दोले हो सवार राम नाम अंतर उतार पूरे गुर की पूरी दिखिया जिस मन बसै तिस साच परीखिया मन तन नाम जपो लिव लाए दुख दर्द मन ते पौ जाए

सिर ऊपर ठांडा गुर सूरा, नानक ताके कार्ज पूरा, मत पूरी अमृत जाकी दृष्ट, दर्शन पेखत उदृत सृष्ट, चरण कमल जाके अनूप, सफल दर्शन सुंदर हर रूप, तन सेवा सेवक प्रमाण, अंतर्जामी पुरख प्रधान, जिस मन बसै सो हो।

अष्टपदी संत संग अंतर प्रभ डिठा नाम प्रभु का लागा मीठा सगल समिग्री एक स्कट माहे अनेक रंग नाना दृष्टा है नौ निध अंगमृत प्रभ का नाम देही मैं इसका विश्राम सुन समाद अनहत तहनाद कह न जाई अचरज विस्माद तिन देखिया जिसे आप दिखाए नानक तिस जन सो जी पाए सो अंतर सो बाहर अनंत।

संतर माहे चार कुंट दैद से समाहे इसते पिन नहीं कोठाओ गुरप्रसाद नानक सुख पाओ वेद प्राण सिमृत मह देख ससियर सूर नक्षत्र मह एक वाणी प्रभु की सबको बोले आप अडोल न कबहू डोले सर्व कला कर खेला खेल बोल न पाइय गुण है अमोल सर्व ज्योत मह जाकी ज्योत धार रहे स्वामी ओत पोत गुरप्रसाद परम का नास नानक पिन मह एहो विसास संत जना का पेखन सब ब्रह्म संत जना का हृदय सब धर्म संत जना सुन शुभ बचन सर्व व्यापी राम संग रचन जिन जाता तिसकी एह रहत सत बचन साधु सब कहत जो जो होए सोई सुख मान करन करावन हार प्रभ जान अंतर बसे बाहर पी ओही नानक दर्शन देख सब मोही।

मद अलिप्तो रहे, जो किस कहना सो आपे कहे, आज्ञा आवे आज्ञा जाए, नानक जा पावे ता लय समाए। इसते होए सो नाही बुरा, उरे कहो किने कछ करा, आप पला करतूत आत्मिक की, आपे जाने अपने जी की, आप साच तारी सब साच, ओत पोत अपन संगराच, ताकि गतमित कहीं न जाए, दूसरे होए ता सुझ ही पाए, इसका किया सब प्रवान, गुर प्रसाद नानक हो जान। जो जाने तिस सदा सुख होए, आप मिलाए लय प्रभ सोए, ओह तनवंत कुलवंत पतवंत, जीवन मुक्त जिस हृदय भगवंत, तन तन तन जन आया, जिस प्रसाद सब जगत तनाया, जानावन काय है सुहाओ, जन कै संग चित आवै नाओ, आप मुक्त मुक्त करै संसार,

खेम कुशल सहज आनंद, साध संग पाई परमानंद। नरक निवार उधारो जियो, गुण गोविंद अमृत रस पियो। चित चितवो नारायण एक, एक रूप जाके रंग अनेक। गोपाल दामोदर दीन दयाल, दुख भंजन पूर्ण कृपाल। सिमर सिमर नाम बार

सुनत कमावत होत उदार, आप तरै लोकह निस्तार। सफल जीवन सफलता का संग, जाकै मन लागा हर रंग। जय जय शब्द अनाहद वाजै, सुन सुन आनंद करे प्रभ गाजै। प्रगटे गोपाल महंत कै माथे, नानक उदरे तिन कै साथे। सन जोग

हमारी। प्रभु की उस्तुत करो संत मीत, सावधान एकाग्र चीत, सुखमनी सहज गोविंद गुण नाम, जिस मन बसै सो होत निदान, सर्व इच्छा ताकि पूर्ण होए, प्रधान पुरख प्रगट सब लोए, सब ते ऊच पाए स्थान, बौर न होवै आवन जान, हर तन खाट चलै जन सोए, नानक जिसह प्राप्त होए, खेम सांत रिद्ध नव निध, बुद्ध ज्ञान सर्व तह सिद्ध, विद्या तप जोग प्रभ ध्यान, ज्ञान श्रेष्ठ उत्तम स्नान, चार पदार्थ कमल प्रगास, सब कै मध सगल ते उदास, सुंदर चतुर तत् का बेता, समदर्शी एक दृष्टेता, एह फल तिस जन कै मुख पने, गुरु नानक नाम बचन मन सुने, एहो निदान जपै मन कोए, सब जुग मै ताकी गत होए, गुण गोबिंद नाम तुन बाणी, सिमरत शास्त्र वेद बखाणी, सगल मतांत केवल हर नाम, गोबिंद भगत कै मन विश्राम, कोट अपराध साध संग मिटै, संत कृपा ते यम ते छुटै, जाकै मस्तक कर्म प्रभ पाए, साध शरण नानक ते आए, जिस मन

इस देही को बहुत साधना करै, मन ते कबहु न बिखिया टरै, जल धोवै बहुत देह अनीत, शुद्ध कहां होए काची पीत, मन हर के नाम की महिमा ऊच, नानक नाम उधरे पतत बहुमूच, बहुत सियाण जम का पौ व्यापै, अनक जतन कर त्रिसन न त्रापै, पेख अनेक अग्न नहीं बुझै, कोट उपाव दरगह नहीं सिजहै, चूटस नाही ऊब पयाल, मोहे व्यापह माया जाल, अवर करतूत सगली जम डान, गोविंद भजन बिन तिल नहीं मान, हर का नाम जपत दुख जाए, नानक बोलै सहज सुभाए, चार पदार्थ जे को मांगै, साध जना की सेवा लागै, जे को अपना दुख मिटावै, हर हर नाम हृदय सद गावै, जे को अपनी शोभा लोरै, साध संगे हों मैं छोरै, जे को जन्म मरण ते डरै, साध जना की सरनी परै, जिस जन को प्रभु दर्श प्यासा, नानक ताकै बल बल जासा, सगल पुरख मह पुरख प्रधान, साध संग जाका मिटै अभिमान, आपस को जो जाने नीचा, सो गनिया सब ते ऊंचा, जाका मन होए सगल की रीना, हर हर नाम तिन कट कट चीना, मन अपने ते बुरा मिटाना, पेखै सगल श्रेष्ठ साजना।

अष्टपदे रमैया के गुण चेत प्राणी कवन मूल ते कवन दृष्टानी जिंतु साज सवार सिंगारिया गर्भ अग्न मह जिने उबारिया बार व्यवस्था तुझे प्यार है दूध पर जोबन भोजन सुख सूद बिरद पया ऊपर साख सैन मुख अपयाओ बैठ कौ दैन एहु निर्गुण गुण कछु न बूझै बख्श लेहो तौ नानक सीझै जे प्रसाद तार ऊपर सुख बस है सुत प्रात मीत बंता संग हस है जे प्रसाद पीवै शीतल जला सुखदाई पवन पावक अमुला जे प्रसाद भोगै सब रसा सगल समग्री संग साथ बसा दीने हस्त पाव कर्ण नेत्र रसना तिसह त्याग अवर संग रचना ऐसे दोख मूड अंध ब्यापे नानक काढ़ लेहो प्रभ आपे आदि अंत जो राखन हार तिस्यों प्रीत न करै गवार जाकी सेवा नवनिध पावै तास्यों मूड़ा मन नहीं लावै जो ठाकुर सत सदा हजूरे ताको अंधा जानत दूरे जाकी टहल पावै दरगह मान तिसह बिसारै मुग्ध अजान सदा सदा यो फूलन हार नानक राखन हार अपार रतन त्याग कौडी संग रचै साच छोड़ झूठ संग मचै जो छड़ना सो अस्थिर कर मानै जो होवन सो दूर परानै छोड़ जाए तिसका श्रम करै संग सहाई तिस पर हरै चंदन लेप उतारै तोए गर्धभ प्रीत पसम संग होए अंधकूप मैं पतित विकराल नानक काढ़ लेहो प्रभ दयाल करतूत पशु की मानस जात लोक पुचारा करै दिन रात बाहर पेख अंतर मल माया छप सुनाहे कछ करै छिपाया बाहर ज्ञान ध्यान इसनान अंतर व्यापै लोभ सुमान अंतर अग्न बाहर तन स्वाह गल पात्र कैसे तरह अथाह जाकै अंतर बसै प्रभ आप नानक तेजन सहज समात सुन अंधा कैसे मार्ग पावै कर गह लेहो ओढ़ निभावै कहां बुझारत बूझै डोरा निस्कहिय तौ समझै पूरा कहां बिशन पद गावै गुंग जतन करै तौ पी सुर भंग कह पिंगल पर्वत पर भवन नहीं होत ऊहां उस गवन करतार करुणा में दीन बेनती करै नानक तुमरी कृपा तरै संग सहाई सो आवै ना चीत जो बैराई ता स्यों प्रीत बलुआ के गृह पीतर बसै अनंत केल माया रंग रसै दृढ़ कर मानै मनह प्रतीत काल न आवै मूढ़े चीत बैर विरोध काम क्रोध मोह चूर

नानक कहू ना सिझे मिन ना वै पत जाए अष्टपदी दस बस्तूले पाछै पावै एक बस्त कारण बिखोट गवावै एक पी ना दे दस पी हिरले औ मूड़ा कहो कहां करे जिस ठाकुर सियो नाही चारा ताकौ कीजै सद नमस्कारा जाकै मन लागा प्रभ मीठा सर्ब सुख ताहू मन बूठा जिस जन अपना हुक्म मनाया सर्ब थोक नानक तिन पाया अगनत साहु अपनी दे रास खात पीत बरतै अनंत उलास अपनी अमान कछ बाहर साहुले अज्ञानी मन रोस करे अपनी प्रतीत आप ही खोवै बाहर उसका विश्वास न होवै जिसकी बस्त तिस आगे राखै प्रभु की आज्ञा मन मत है उसते चौगुण करै निहाल नानक साहिब सदा दयाल अनक भांत माया के हेत सर पर होवत जान अनेत बिरख की छाया स्यों रंग लावै ओ बिनसै ओ मन पछतावै जो दिसै सो चलनहार लपट रहे होते हैं।

अंधार बटाऊ सियों जो लावे नेह, ताको हाथ न आवे केह, मन हर के नाम की प्रीत सुखदाई, कर कृपा नानक आप लय लाई। मिथ्या तन तन कुटुंब सबाया, मिथ्या होमै ममता माया, मिथ्या राज जोवन तन माल, मिथ्या काम क्रोध विकराल, मिथ्या रथ हस्ती असव वस्त्रा, मिथ्या रंग संग माया पेख हस्ता, मिथ्या त्रोह मोह अभिमान, मिथ्या आपस ऊपर करत गुमान, अस्थिर भगत साध की सरन, नानक जप जप जीवै हर के चरण, मिथ्या श्रवण पर निंदा सुनै, मिथ्या हस्त पर दर्ब कौ हिर है, मिथ्या नेत्र पेखत पर त्रै रूपाद, मिथ्या रसना भोजन अंसवाद, मिथ्या चरण पर विकार कौ ताव है, मिथ्या मन पर लोभ लुभाव है, मिथ्या तन नहीं पर उपकारा, मिथ्या बास लेत विकारा, बिन बूझे मिथ्या सब पए, सफल देहे नानक हर हर नाम ले। बिरथी साकत की आरजा, साच बिना कह होवत

राष्ट्रपति जय प्रसाद छत्ते अमृत खाहे तिस ठाकुर का और रख मन माहे जय प्रसाद सुगंधत तन लाभ है तिसको सिमरत परमगत पाव है जय प्रसाद बस है सुख मंदर तिसह ते आए सदा मन अंदर जय प्रसाद गृह संग सुख बसना आठ पहर सिमरो तिस रसना जय प्रसाद रंग रस भोग नानक सदा ध्याई है ध्यावन जोग जय प्रसाद पाठ पटंबर हंडाव है तिसह त्याग तत अबर लुभाव है जय प्रसाद सुख सेज सोई जय मन आठ पहर ताका जस गावी जय जय प्रसाद तुझ सब को मान है मुख ताको जस रसन बखान है जय प्रसाद तेरो रहता धर्म मन सदा त्याय केवल पार ब्रह्म प्रभ जी जबत दरगह मान पाव है नानक पत सेती कर जाव है जय प्रसाद आरोग कंचन देही लिवलाहो तिस राम स्नेही जय प्रसाद तेरा उल्ला रहत मन सुख पाव है हर हर जस कहत जय प्रसाद तेरे सगल छिद्र ठाके मन सरनी पर ठाकुर प्रभ ताकै जय प्रसाद तुझ को न पहुंचै मन साथ साथ सिमरो प्रभ ऊचे जय प्रसाद पाई दुर्लभ देहे नानक ताकी भगत करेहे जय प्रसाद आप भूखन पहरी जय मन तिस सिमरत क्यों आलस की जय जय प्रसाद असव हस्त असवारी मन तिस प्रभ को कबहू न बिसारी जय प्रसाद बाग मिलख तना राख प्रोय प्रभ अपने मना जिन तेरी मन बंत मनाई उठत बैठत

मन आठ पहर करत इसका ध्यान, जे प्रसाद तुहा चार व्यवहारी, इस प्रभु को सास सास चितारी, जे प्रसाद तेरा सुंदर रूप, सो प्रभु सिमरहु सदा अनूप, जे प्रसाद तेरी निकी जात, सो प्रभु सिमर सदा दिन रात, जे प्रसाद तेरी पत्र है, गुर प्रसाद नानक जस कहै, जे प्रसाद सुन है कर्ण नाद, जे प्रसाद पेख है बिस्माद, जे प्रसाद बोल है अमृत रसना, जे प्रसाद सुख सहज जे बसना, जे प्रसाद हस्त कर चल है, जे प्रसाद संपूर्ण फल है, जे प्रसाद परम गत पाव है, जे प्रसाद सुख सहज समाव है, ऐसा प्रभ त्याग अवर कत लग हो, गुर प्रसाद नानक मन जाग हो, जे प्रसाद तू प्रगट संसार, इस प्रभु को मूल न मन हम विसार, जे प्रसाद तेरा प्रताप, मेरे मन मूड़ तू ताका जाप, जे प्रसाद तेरे कार्य पूरे, इसे जान मन सदा हजूरे, जे प्रसाद तू पाव है साच, रे मन मेरे तू ता स्यों राच, जे प्रसाद सबकी गत होए, नानक जाप जपै जप सोए, आप जपाए जपै सो ना हो, आप गावाए सो हर गुण गाओ, प्रभु कृपा ते होए प्रगास, प्रभु दया ते कमल बिगास, प्रभु सो प्रसन्न बसै मन सोए, प्रभु दया ते मत उत्तम होए, सब निधान प्रभु तेरी मया, आपो कछु न किन्हू लया, जित जित लाभो तित लगै हर नाथ, नानक इनकै कछु न हाथ। श्लोक अगम अगाध पार ब्रह्म सोए, जो जो कहे सो मुक्ता होए, सुन मीता नानक बिनवंता, साध जिना की अचरज कथा अष्टपदी, साध कै संग मुख उज्जल होत, साध संग मल सगली खोत, साध कै संग मिट अभिमान, साध कै संग प्रगट सो ज्ञान, साध कै संग बुझै प्रभ नेरा, साध संग सब होत नबेरा, साध कै संग पाए नाम रतन, साध कै संग एक ऊपर जतन, साध की महिमा वरनै कौन प्राणी, नानक साध की शोभा प्रभ माहि समानी, साध कै संग अगोचर मिलै, साध कै संग सदा प्रफुल्लै, साध कै संग आवै बस पंचा, साध संग अमृत रस पुंचा, साध संग होए सब की रेन, साध कै संग मनोहर बैन, साध कै संग न कथहू पावै, साध संग अस्थित मन पावै, साध कै संग माया ते पिन, साध संग नानक प्रभ सो प्रसन्न, साध संग दुश्मन सब मीत, साधु कै संग महापुनीत, साध संग किस्यों नहीं बैर, साध कै संग न बीगा पैर, साध कै संग नाही को मंदा, साध संग जाने परमानंदा, साध कै संग नाही हों ताप, साध कै संग तजै सब आप, आपे जाने साध बढ़ाई, नानक साध प्रभु बने आई, साध कै संग न कबू तावै, साध कै संग सदा सुख पावै, साध संग बस्त अगोचर लहै, साधु कै संग अजर सहै, साध कै संग बसै थान ऊचै, साधु कै संग महल पहुचै, साध कै संग दृढ़ सब धर्म, साध कै संग केवल पार ब्रह्म, साध कै संग पाए नाम निधान, नानक साधु कै कुर्बान, साध कै संग सब कुल उधारै, साध संग साजन मीत कुटुंब निस्तारै, साधु कै संग सो धन पावै, जिस धन ते सब को वरसावै, साध संग धर्म राय करे सेवा, साध कै संग शोभा सुर देवा, साधु कै संग पाप पलायन, साध संग अमृत गुण गायन, साध कै संग सब थान गम, नानक साध कै संग सफल जनम, साध कै संग नहीं कछ काल, दर्शन भेट होत निहाल, साध कै संग कलूखत हरै, साध कै संग नरक पर हरै, साध कै संग इहा उहा सुहेला, साध संग बिछरत हर मेला, जो इच्छै सोई फल पावै, साध कै संग न बिरथा जावै, पार ब्रह्म साध रिद बसै, नानक उधरै साध सुन रसै, साध कै संग सुनो हर नाओ, साध संग हर के गुण गाओ, साध कै संग न मनते बिसरै, साध संग सर पर निस्तरै, साध कै संग लगै प्रभ मीठा, साधु कै संग कट कट डीठा, साध संग पई आज्ञाकारी, साध संग गत पई हमारी, साध कै संग मिटे सब रोग, नानक साध भेटे संजोग, साध की महिमा वेद न जान है, जेता सुन है तेता बखियान है, साध की उपमा तेह गुण ते दूर, साध की उपमा रही भरपूर, साध की शोभा का नाही अंत, साध की शोभा सदा बेअंत, साध की शोभा ऊंच ते ऊंची, साध की शोभा मूछ ते मूची, साध की शोभा साध बन आई, नानक साध प्रभ भेद ना पाई। श्लोक मन साचा मुख साचा सोए, अवर न पेखै एक बिन कोए, नानक ए लक्षण ब्रह्म ज्ञानी होए। अष्टपदी ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेप, जैसे जल मह कमल अलेप, ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्दोख, जैसे सूर सर्ब कौ शोक, ब्रह्म ज्ञानी कै दृष्ट समान, जैसे राज रंक कौ लागै तुल पवान,
ब्रह्म ज्ञानी कह तीरज एक ज्यो वसुधा को खोदा को चंदन लेप ब्रह्म ज्ञानी का यह गुनाओ नानक ज्यो पावक का सहज सुभाव ब्रह्म ज्ञानी निर्मल ते निर्मला जैसे मैल न लागे जला ब्रह्म ज्ञानी कह मन होए प्रगास जैसे तर उपर आकाश ब्रह्म ज्ञानी कह मित्र सत्र समान ब्रह्म ज्ञानी कह नाही अभिमान ब्रह्म ज्ञानी ऊचते ऊंचा मन अपना है सब ते नीचा ब्रह्म ज्ञानी से जन पय नानक जिन प्रभ आप करे ब्रह्म ज्ञानी सगल की रीना आत्मरस ब्रह्म ज्ञानी चीना ब्रह्म ज्ञानी की सब ऊपर माया ब्रह्म ज्ञानी ते कछ बुरा न पया ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी ब्रह्म ज्ञानी की दृष्ट अमृत बरसी ब्रह्म ज्ञानी बंधन ते मुक्ता ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल युगता ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान नानक ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान ब्रह्म ज्ञानी एक ऊपर आस ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश ब्रह्म ज्ञानी कह गरीबी समाहा ब्रह्म ज्ञानी पर उपकारो माहा ब्रह्म ज्ञानी कह नाही धंधा ब्रह्म ज्ञानी ले धावत बंधा ब्रह्म ज्ञानी कह होए सुफला ब्रह्म ज्ञानी सुफल फला ब्रह्म ज्ञानी संग सगल उधार नानक ब्रह्म ज्ञानी जपै सगल संसार ब्रह्म ज्ञानी कह एक रंग ब्रह्म ज्ञानी कह बसै प्रभ संग ब्रह्म ज्ञानी कह नाम आधार ब्रह्म ज्ञानी कह नाम परवार ब्रह्म ज्ञानी सदा सद जागत ब्रह्म ज्ञानी अहं बुद्ध त्यागत ब्रह्म ज्ञानी कह मन परमानंद ब्रह्म ज्ञानी कह घर सदा आनंद ब्रह्म ज्ञानी सुख सहज निवास नानक ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का बेता ब्रह्म ज्ञानी एक संग हेता ब्रह्म ज्ञानी कह होए अचिंत ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मंत ब्रह्म ज्ञानी जिस करै प्रभ आप ब्रह्म ज्ञानी का बड़ प्रताप ब्रह्म ज्ञानी का दर्श बड़ भागी पाई है ब्रह्म ज्ञानी का बल बल जाई है ब्रह्म ज्ञानी का खोज है महेश्वर नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर ब्रह्म ज्ञानी की कीमत ना है ब्रह्म ज्ञानी कह सगल मन माहे ब्रह्म ज्ञानी का कौन जाने भेद ब्रह्म ज्ञानी का सदा आदेश ब्रह्म ज्ञानी का कथिया न जाय अदाक्षर ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकुर ब्रह्म ज्ञानी की मित कौन बखाने ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जाने ब्रह्म ज्ञानी का अंत न पार नानक ब्रह्म ज्ञानी का सदा नमस्कार ब्रह्म ज्ञानी सब सृष्टि का करता ब्रह्म ज्ञानी सद जीव है नहीं मरता ब्रह्म ज्ञानी मुक्त जुगत जीव का दाता ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरख विधाता ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का नाथ ब्रह्म ज्ञानी का सब ऊपर हाथ ब्रह्म ज्ञानी का सगल आकार ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार ब्रह्म ज्ञानी की शोभा ब्रह्म ज्ञानी बनी नानक ब्रह्म ज्ञानी।

नानक कोट मध्ये को ऐसा अपरस वैष्णो सो जिस ऊपर सो प्रसन्न विष्ण की माया ते हुए पिन कर्म करत होवे निह कर्म तिस वैष्णो का निर्मल धर्म काहू फल की इच्छा नहीं बाछा है केवल भक्त कीर्तन संग राचा है मंत्र अंतर सिमरन गोपाल सब ऊपर होवत कृपाल आप दृढ़ अवरह नाम जपावे नानक ओह वैष्णो परम गत पावे भगवती भगवंत भगत का रंग सगल त्यागै दुष्ट का संग मनते बिनसै सगला परम कर पूजा सगल पार ब्रह्म साध संग पापा मल खोवै तिस भगवती की मत उत्तम होवै भगवंत की टहल करै नित नीत मंतन अर्पै बिशन प्रीत हर के चरण हृदय बसावै नानक ऐसा भगवती भगवंत का पावै सो पंडित जो मन पर बुद्ध है राम नाम आत्म है शुद्ध है राम नाम सार रस पीवै उस पंडित कै उपदेश जग जीवै हर की कथा हृदय बसावै सो पंडित फिर जोन न आवै वेद पुराण सिमरत बूझै मूल सुख मह जानै स्थूल चौ वरना कौ दे उपदेश नानक उस पंडित कौ सदा आदेश बीज मंत्र सर्व को ज्ञान चौ वरना मह जपै को नाम जो जो जपै तिसकी गत होए साध संग पावै जन कोए कर कृपा अंतर

जिसका मन पार ब्रह्म का निवास, तिसका नाम सत राम दास। आत्म राम तिस नदरी आया, दास दसंतन पाए तिन पाया। सदा निकट निकट हर जान, सो दास तर्क है प्रमाण। अपने दास को आप कृपा करै, तिस दास को सब सुझ ही परै। सगल संग आत्म उदास, ऐसी जुगत नानक राम दास। प्रभु की आज्ञा आत्म हितावै, जीवन मुक्त सोख हावै। तैसा हर्ख तैसा उस सोग, सदा आनंद तह नहीं वियोग। तैसा स्वर्ण तैसी उस माटी, तैसा अमृत तैसी बिख खाटी। तैसा मान तैसा अभिमान, तैसा रंक तैसा राजान। जो वरताए साई जुगत।

प्रकार नानक रचना प्रभ रचे बहुविध अनेक प्रकार अष्टपदे कई कोट होए पूजारी कई कोट आचार व्यवहारी कई कोट पै तीर्थवासी कई कोट बन प्रमह उदासी कई कोट वेद के स्रोते कई कोट तपीसर होते कई कोट आत्म ध्यान धार है कई कोट कब का विचार है कई कोट नवतन नाम त्याव है नानक करते का अंत न पाव है कई कोट पै अभिमानी कई कोट अंध अज्ञानी कई कोट किरपन कठोर कई कोट अपिग आत्म निकोर कई कोट पर दर्भ कौहिर है कई कोट पर दुख ना करह

कई कोट सिद्ध जति जोगी, कई कोट राजे रस भोगी, कई कोट पंखी सर्फ उपाए, कई कोट पाथर बिरख निप जाए, कई कोट पवन पाणी बैसंतर, कई कोट देश भू मंडल, कई कोट ससियर सूर नक्षत्र, कई कोट देव दानव इंद्र सिर चत्र, सगल समग्री अपने सूत धारै, नानक जिस जिस भावै तिस तिस निस्तारै, कई कोट राजस तामस सातक, कई कोट वेद पुराण सिम

देख बढ़ाई, इसका बल नाही इस हाथ, कर्ण करावन सर्व को नाथ। आज्ञाकारी बपरा जियो, जो तिस पावै सोई फुनफियो। कभू ऊंच नीच मैं बसै, कभू सोग हरख रंग हसै।

कबहू महाक्रोध विकराल, कबहू सर्व की होतरवाल, कबहू होए बह बड़ राजा, कबहो पेखारी नीच का साजा, कबहू अप कीर्त में आवे, कबहू भला भला कहावे, ज्यों प्रभ राखे तिवही रहे, गुरप्रसाद नानक सच कहे, कबहू होए पंडित करे बखियान, कबहू मोन तारी लावे ध्यान, कबहू तट तीर्थ स्नान, कबहू सिद्ध साधक मुख ज्ञान, कबहू कीट हस्त पतंग होए जिया, अनक जोन परमे परमिया, नाना रूप ज्यों स्वांगी दिखावे, ज्यों प्रभ पावे तिवै नचावे, जो तिस पावे सोई होए, नानक दूजा अवर न कोए, कबहू साध संगत एहु पावे, उस स्थान ते बहुर न आवे, अंतर होए ज्ञान प्रगास, उस स्थान का नहीं विनाश, मन तन नाम रते एक रंग, सदा बस है पार ब्रह्म कै संग, ज्यों जल में जल आए खटाना, त्यों ज्योति संग ज्योत समाना, मिट गए गवन पाए विश्राम, नानक प्रभ कै सद कुर्बान। सलोक सुखी बसै मस्कीनिया, आप निवार तले, बड़े बड़े

अनक तपस्या करे अहंकार, नरक सुर्ग फिर फिरे अवतार, अनक जतन कर आत्म नहीं द्रवै, हर दरगह कौ कैसे गवै, आपस कौ जो भला कहावै, तिसे भलाई निकट न आवै, सर्व की रेंज जाका मन होए, कौ नानकता की निर्मल सोए, जब लग जाने मुझते कछ होए, तब इसको सुख ना ही कोए, जब ए जाने मैं किश करता, तब लग गर्भ जोन मैं फिरता, जब तारे को बैरी मीत, तब लगने चलना ही चीत, जब लग मोह मग्न संगमाए, तब लग धर्म राय दे सजाए, प्रभ कृपा ते बंधन टूटे, गुर प्रसाद नानक हो छूटे, सहस खटे लख को उठतावै, तृप्त आवै माया पाछै पावै, अनक भोग बिखिया के करै, नह तृप्तावै खप खप मरै, बिना संतोख नहीं को राजै, सुपन मनोरथ बिरथे सब काजै, नाम रंग सर्व सुख होए, बड़भागी किसै प्राप्त हो।

जैसी दृष्ट करे तैसा होए, आपे आप आप प्रभ सोए। जो किश कीनो सो अपने रंग, सब ते दूर सब हूं कै संग। बूझे देखे करै विवेक, आपै एक आपै अनेक। मरै न बिनसै आवै न जाए, नानक सद ही रहया समाए। आप उपदेसै समझै आप, आपे रचया सब कै साथ। आप कीनो अपन विस्तार, सब कछ उसका ओह करनै हार। उसते पिन कहो किश होए, थान तनंतर एक कै सोए। अपने चलते आप करनै हार, कौतक करै रंग अपार। मन में आप मन अपने माहे, नानक कीमत कह न जाए। सत सत सत प्रभ स्वामी, गुरप्रसाद किनै बखियानी। सच सच सच सब कीना, कोट मध्य किनै बिरलै चीना। भला भला भला तेरा।

नाम की तारे पुरिया सब पवन, नाम का संग उधे सुन श्रवन, कर कृपा जिस अपने नाम लाए, नानक चौथे पद में सो जन गत पाए। रूप सत जाका सत स्थान, पुरख सत केवल प्रधान, करतूत सत सत जाकी माणी, सत पुरख सब माहे समाणी, सत कर्म जाकी रचना सत, मूल सत सत उत्पत्त, सत करनी निर्मल निर्मली, जिसे बुझाए तिसे सब भले। सत नाम प्रभु का सुखदाय, विश्वास सत नानक गुरते पाए, सत बचन साधु उपदेश, सत ते जान जाकर हृदय प्रवेश, सत निरत बूझा जे कोए, नाम जपत ताकी गत होए। आप सत किया सब सत, आपे जाने अपनी मित गत, जिसकी सिरसो सो करने हार, अब न बूझ करत विचार, करते की मित न जाने किया, नानक ज्योतिष पावै सो वर्तिया, बिस्मन बिस्म भय बिस्माद, जिन बूझिया तिस आया स्वाद। प्रभु कै रंग राच जान रहे, गुरु कै भजन पदार्थ लहे, होए दाते दुख काटन हार, जा कै संग तरै संसार, जन का सेवक सोवड़ पागी, जन कै संग एक लिव लागी, गुण गोबिंद कीर्तन जन गावै, गुर प्रसाद नानक फल पावै। सलोक आद सच जुगाद सच है पे सच, नानक होसी पे सच, अष्टपदी चरण सत सत परसनिहार।

का को न पूछै, प्रभ के सेवक ऊंचते ऊंचे। जो प्रभ अपनी सेवा लाया, नानक सो सेवक दह दिस प्रगटाया। नीकी कीरी मह कल राखै, पसम करै लस्कर कोट लाखै। जिसका सास न काढ़त आप, ताकौ राखत दे कर हाथ। मानस जतन करत बहु भात, तिसके करत बिरथे जात। मारै न राखै अवर न कोए, सर्ब जियां का राखा सोए। काहे सोच करै रे प्राणी, जप नानक प्रभ अलख बिनाणी। बारं बार बार प्रभ जपिया, पी अमृत एहो मन तन तृपिया। नाम रतन जिन गुरमुख पाया, तिस किछ अवर नाहीं दिसटाया। नाम तन नामो रूप रंग, नामो सुख हर नाम का संग। नाम रस जो जन तृप्ताने, मन तन नाम है नाम समाने। उठत बैठत सोवत नाम, कहो नानक जन कै साध काम। बोलो जा।

मंत ने अपना तिन जन दे, जिन जन अपना प्रभु पछाता, सो जन सर्व थोक का दाता, तिसकी शरण सर्व सुख पाव है, तिसके दर सब पाप मिटाव है, अवस्यान पसगली छाड़, तिस जन की तू सेवा लाग, आवन जान न हो भी तेरा, नानक तिस जन के पूजो सद पैरा, सलोक सत पुरख जिन जानया, सतगुर तिसका नाम, तिसकै संग सिख उदरै, नानक हर गुण गाओ अस्पदी, सतगुर सिख की करै प्रपाल, सेवक कहो गुर सदा दयाल, सिख की गुर दुरमत मल हिरै, गुर बचनी हर नाम उचरै, सतगुर सिख के बंधन काटै, गुर का सिख विकार ते हटै, सतगुर सिख को नाम धन दे, गुर का सिख वडभागी हे, सतगुर सिख का हलत पलत सवारै, नानक सतगुर सिख को जी नाल समारै, गुर कै गृह सेवक जो रहै, गुर की आज्ञा मन मह सहै, आपस को कर कछ न जनावै, हर हर नाम हृदय सा त्यावै,

पहुंचत प्राणी अगम अगोचर प्रभ निर्माणी निराहार निर्वैर सुखदाई ताकि कीमत किने न पाई अनक भगत बंदन नित करै चरण कमल हृदय सिमरै सत बलिहारी सतगुर अपने नानक जिस प्रसाद ऐसा प्रभ जपने एहो हर रस पावै।

सतगुरु ते निर्मल मत लई जन को प्रभ होयो दयाल सेवक कीनो सदा निहाल बंधन काट मुक्त जन पया जन्म मरण दुख प्रम गया इच पुनी सरदा सब पूरी रब रहया सत्संग हजूरी जिसका साथ इन लिया मिलाए नानक भक्ति नाम समाए सो क्यों बिसरै जे काल न पानै सो क्यों बिसरै जे किया जानै सो क्यों बिसरै जिन सब किछ दिया सो क्यों बिसरै जे जीवन जिया सो क्यों बिसरै जे अग्नि मह रखै गुरप्रसाद को बिरला लखै सो क्यों बिसरै जे बिखते काढ़ै जन्म जन्म का टूटा गांढ़ै गुरपूरै तत है बुझाया प्रभ अपना नानक जन त्याया साजन संत करो एहो काम आन त्याग जपो हर नाम सिमर सिमर सिमर सुख पावहो आप जपो आप रह नाम जपावहो भगत पाए तरिया संसार बिन भगती तन होसी छार सर्व कल्याण सुख निध नाम।

जब आकार एहो कछ न दिसटेता, पाप पुन तब कहते होता। जब धारी आपन सुन समाद, तब बैर विरोध किस संग कमात। जब इसका वर्ण चिह्न न जापत, तब हरख सोग कहो किसे व्यापत।

जब अपनी शोभा आपन संग बनाई, तब कवन माए बाप मित्र सुत पाई। जय सर्व कला आपे प्रवीन, तै वेद कतेब कहां को चीन। जब अपने आप उतारे, तो सगन अपसगन कहां विचार है। जय अपने ऊच अपने आप नेरा, तै कौन ठाकुर कौन कही है चेरा। विस्मन विस्म रहे विस्माद, नानक अपनी गत जान हो आप। जय अचल अछेद अभेद समाया,

पाका आपह तनी उनकी शोभा उन्हों बनी आपह कौत करै अंध चोज आपह रस भोग निर्जोग जिस पावै तिस अपन ना इलावै जिस पावै तिस खेल खिलावै बेसुमार अथाह अगणत अतुल है।

जो जो रचियो सुति सहत आत, जिस पावै तिस लय मिलाए, भगत कह हर के गुण गाए, मन अंतर विश्वास कर मान्या, करनहार नानक इक जान्या, जन लागा हर एक नाए, इसकी आस न बिरथी जाए। सेवक को सेवा बन आई, हुक्म बूझ परम पद पाई, इसते ऊपर नहीं विचार, जाके मन

साध संग मिल करो आनंद गुण गावो प्रभ परमानंद राम नाम तत् करो विचार दुर्लभ देह का करो उदार अमृत बचन हर के गुण गाओ प्राण तरन का यह सुहाओ आठ पहर प्रभ एक हो नेरा मिटा ज्ञान बिनसै अंधेरा सुन उपदेश हृदय बसावहो मन इच्छे नानक फल पावहो हलत पलत दो लेहो सवार राम नाम अंतर उतार पूरे गुरु की पूरी दिखिया जिस मन बसै तिस साच परीखिया मन तन नाम जपहो लिव लाए दुख दर्द मन ते पहु जाए सच व्यापार करहो व्यापारी दरगह निभै।

अष्टपदी संत संग अंतर प्रभ डीठा नाम प्रभु का लागा मीठा सगल समिग्री एक स्कट माहे अनेक रंग नाना दृष्टा है नौ निध अंगमत प्रभ का नाम देही मैं इसका विश्राम सुन समाद अनहत तहनाद कह न जाई अचरज विस्माद तिन देखिया जिसे आप दिखाए नानक तिस जन सोझ ही पाए

तैसा कर्म बाउण पाणी बैसंतर माहे चार कुंट दै दिसे समाहे तिसते भिन्न नहीं कोठाओ गुरप्रसाद नानक सुख पाओ वेद पुराण सिमृत मह देख ससियर सूर नक्षत्र मह एक बाणी प्रभ की सबको बोले आप अडोल न कबहू डोले सर्ब कला कर खेल खेल बोल न पाइय गुण है अमोल सर्ब ज्योत मह जाकी ज्योत धार रहे हो स्वामी ओत पोत गुरप्रसाद परम का नास नानक तिन मह एहो विसास संत जना का पेखन सब ब्रह्म संत जना का हृदय सब धर्म संत जना सुनै शुभ बचन सर्व व्यापी राम संग रचन जिन जाता तिसकी एह रहत सत बचन साधु सब कहत जो जो होए सोई सुख मानै करन करावन हार प्रभ जानै अंतर बसे बाहर पी ओही नानक दर्शन देख सब मोही।

की नहीं जाए, जिस पावे तिस लय मिलाए, कवन नित कवन कहिया दूर, आपे आप भरपूर। अंतरगत जिस आप जनाए, नानक तिस जन आप बुझाए, सर्व भूत आप।

कै मद अलिप्तो रहे, जो किस कहना सो आपे कहे, आज्ञा आवे आज्ञा जाए, नानक जा पावे ता लए समाए, इस्ते होए सो नाही बुरा, ओरे कहो किने कछ करा, आप भला करतूत आत्मिक की, आपे जाने अपने जी की, आप साच तारी सब साच, ओत पोत अपन संगराच, ताकि गतमित कहीं ना जाए, दूसर होए ता सुझ ही पाए, इसका किया सब प्रवान, गुरप्रसाद नानक हो जान, जो जाने तिस सदा सुख होए, आप मिलाए लए प्रस होए, ओ तनवंत कुलवंत पतवंत।

जियो गुण गोविंद अमृत रस पियो चित चितवो नारायण एक एक रूप जाके रंग अनेक गोपाल दामोदर दीन दयाल दुख भंजन पूर्ण कृपाल सिमर सिमर नाम।

सफल जीवन सफलता का संग, जाके मन लागा हर रंग। जय जय शब्द अनाहद वाजय, सुन सुन आनंद करे प्रभु गाजय। प्रगटे गोपाल महंत कह माथे, नानक उदरे तिन कह साथे। सन जोग सुन सरनी आए, कर कृपा प्रभु आप मिलाए। मिट गए बैर पए सबरेन, अमृत नाम साध संग लैन।

हमारी। प्रभु की उस्तुत करो संत मीत, सावधान एकाग्र चीत, सुखमनी सहज गोबिंद गुण नाम, जिस मन बसै सो होत निदान।

निर्मल शोभा अमृतता की बानी, एक नाम मन माहे समानी, दुख रोग बिनसे पै परम, साध नाम निर्मलता के कर्म, सबते ऊचता की शोभा बनी, नानक एह गुण नाम सुख मनी, दुख रोग बिनसे पै परम, साध नाम

अस्तपदे परमैया के गुण चेत पुरानी कवन मूलते कवन दृष्टानी जिंतु साज सवार सिंगारिया गर्भ अग्नि है जिन्हें उबारिया बार व्यवस्था तुझे प्यार है दूध पर जोबन भोजन सुख सूद बिरद पया ऊपर साख सैन मुख अपयाओ बैठ कौ दैन एहो निर्गुण गुण कछु न बूझै बख्श लेहो तो नानक सीझै जे प्रसाद तार ऊपर सुख बस है सुत प्रात मीत बंता संग हस है जे प्रसाद पीवै शीतल जला सुखदाई पवन पावक अमुला जे प्रसाद भुगै सब रसा सगल समग्री संग साथ बसा दीने हस्त पाव कर्ण नेत्र रसना तिसह त्याग अवर संग रचना ऐसे दोख मूड अंध व्यापे नानक काढ़ लेहो प्रभ आपे आदि अंत जो राखन हार तिस्यो प्रीत न करै गवार जाकी सेवा नवनिध पावै तास्यो मूड़ा मन नहीं लावै जो ठाकुर सत सदा हजूरे ताको अंधा जानत दूरे जाकी टहल पावै दरगह मान तिसह बिसारै मुग्ध अजान सदा सदा यो पूलन हार नानक राखन हार अपार रतन त्याग कौडी संग रचै साच छोड़ झूठ संग मचै जो छड़ना सो अस्थिर कर मानै जो होवन सो दूर परानै छोड़ जाए तिसका श्रम करै संग सहाई तिस पर हरै चंदन लेप उतारै तोए गर्धभ प्रीत पसम संग होए अंधकूप में पतित विकराल नानक काढ़ लेहो प्रभ दयाल करतूत पशु की मानस जात लोक पुचारा करै दिन रात बाहर पेख अंतर मल माया छपसनाहे कछ करै छिपाया बाहर ज्ञान ध्यान इसनान अंतर व्यापै लोभ सुमान अंतर अग्न बाहर तन स्वाह गल पत्थर कैसे तरह अथाह जाकै अंतर बसै प्रभ आप नानक तेजन सहज समात सुन अंधा कैसे मार्ग पावै कर गह लेहो ओढ़ निभावै कहां बुझारत बूझै डोरा निस्कहियै तो समझै पूरा कहां बिसन पर गावै गुंग जतन करै तो पी सुर भंग कह पिंगल पर्वत पर भवन नहीं होत ऊहा उस गवन करतार करुणा में दीन बेनती करै नानक तुमरी कृपा तरै संग सहाई सो आवै ना चीत जो बैराई ता स्यो प्रीत बलुआ के गृह पीतर बसै अनद केल माया रंग रसै दृढ़ कर मानै मनै प्रतीत काल न आवै मूढ़े चीत बैर विरोध काम क्रोध मोह झूठ विकार महालोभ त्रोह।

नानक कहू न सिझे मिन नावै पत जाए। अष्टपदी दस बस्तूले पाछै पावै एक बस्त कारण विखोट गवावै। एक पी ना दे दस पी हिरले तो मूड़ा कहो कहां करे। जिस ठाकुर सिओ नाही चारा ताको की जय सद नमस्कारा। जाकै मन लागा प्रभ मीठा सर्ब सुख ताहू मन बूठा। जिस जन अपना हुक्म मनाया सर्ब थोक नानक तिन पाया। अगनत साहु अपनी देरास खात पीत बरतै अनंत उलास। अपनी अमान कछ बाहर साहुले अज्ञानी मन रोस करे। अपनी प्रतीत आप ही खोवै बाहर उसका विश्वास न होवै। जिसकी वस्त तिस आज्ञा राखै प्रभ की आज्ञा मन मत है। उसते चौगुण करै निहाल नानक साहिब सदा दयाल। अनक भांत माया के हेत सर पर होवत जान अनेत। बिरख की छाया स्यों रंग लावै ओ बिनसै ओ मन पछतावै। जो दिसै सो चल नहार लपट रहो तह अंध अंधार। बटाऊ स्यों जो लावै नेह ताको हाथ न आवै केह। मन हर के नाम के प्रीत सुखदाई कर कृपा नानक आप लय लाई। मिथ्या तन तन कुटुंब सबाया मिथ्या होमै ममता माया। मिथ्या राज जोवन तन माल मिथ्या काम क्रोध विकराल। मिथ्या रथ हस्ती असव वस्त्रा मिथ्या रंग संग माया पेख हस्ता। मिथ्या त्रोह मोह अभिमान मिथ्या आपस ऊपर करत गुमान। अस्थिर भगत साध की सरन नानक जप जप जीवै हर के चरण। मिथ्या श्रवण पर निंदा सुनै मिथ्या हस्त पर दर्ब को हिर है। मिथ्या नेत्र पेखत पर त्रै रूपाद। मिथ्या रसना भोजन अंसवाद। मिथ्या चरण पर विकार कौ ताव है। मिथ्या मन पर लोभ लुभाव है। मिथ्या तन नहीं पर उपकारा मिथ्या बास लेत विकारा। बिन बूझे मिथ्या सब पे सफल देहे नानक हर हर नाम ले। बिरथी साकत की आरजा साच बिना कह होवत सूचा।

0: राष्ट्रपति जय प्रसाद छत्ते अमृत खाह तिस ठाकुर कौ रख मन माह। जय प्रसाद सुगंधत तन लाभ है तिस कौ सिमरत परमगत पाव है। जय प्रसाद बसह सुख मंदर तिसह त्याय सदा मन अंदर। जय प्रसाद गृह संग सुख बसना आठ पहर सिमरो तिस रसना। जय प्रसाद रंग रस भोग नानक सदा त्याई है त्यावन जोग। जय प्रसाद पाठ पटंबर हंडाव है तिसह त्याग कत अबर लुभाव है। जय प्रसाद सुख सेज सोई जय मन आठ पहर ताका जस गावी जय। जय प्रसाद तुझ सब को मान है मुख ताको जस रसन बखान है। जय प्रसाद तेरो रहता धर्म मन सदा त्याए केवल पार ब्रह्म। प्रभ जी जबत दरग है मान पाव है नानक पत से ती कर जाव है। जय प्रसाद आरोग कंचन देही लिवलाहो तिस राम स्नेही। जय प्रसाद तेरा उल्ला रहत मन सुख पाव है हर हर जस कहत। जय प्रसाद तेरे सगल छिद्र ठाके मन सरनी पर ठाकुर प्रभ ताके। जय प्रसाद तुझको न पहुंचे मन साथ साथ सिमरो प्रभ ऊचे। जय प्रसाद पाई दुर्लभ देहे नानक ताकी भगत करे हे। जय प्रसाद आप भूखन पहरी जय मन तिस सिमरत क्यों आलस की जय। जय प्रसाद असल हस्त असवारी मन तिस प्रभ को कबहू न बिसारी। जय प्रसाद बाग मिलख तना राख प्रोय प्रभ अपने मना। जिन तेरी मन बंत बनाई उठत बैठत सत सहत आई। तिसहत आए जो एक अलख इहां उहां नानक तेरी रख। जे प्रसाद करह पुन बहुदान मन आठ पहर कर तिसका ध्यान। जे प्रसाद तू आ चार व्यवहारी तिस प्रभ को सास सास चितारी। जे प्रसाद तेरा सुंदर रूप सो प्रभ सिमरो सदा अनूप। जे प्रसाद तेरी निकी जात सो प्रभ सिमर सदा दिन रात। जे प्रसाद तेरी पत्र है गुरप्रसाद नानक जस कह। जे प्रसाद सुनह करन नाद जे प्रसाद पेख है बिस्माद। जे प्रसाद बोल है अमृत रसना जे प्रसाद सुख सहज जे बसना। जे प्रसाद हस्त कर चल है जे प्रसाद संपूर्ण फल है। जे प्रसाद परम गत पाव है जे प्रसाद सुख सहज समाव है। ऐसा प्रभ त्याग अवर कत लग हो गुर प्रसाद नानक मन जाग हो। जे प्रसाद तू प्रगट संसार इस प्रभ को मूल न मन हम विसार। जे प्रसाद तेरा प्रताप मेरे मन मूड तू ताका जाप। जे प्रसाद तेरे कार्य पूरे इसे जान मन सदा हजूरे। जे प्रसाद तू पाव है साच रे मन मेरे तू ता स्यों राच। जे प्रसाद सब की गत होए नानक जाप जपै जप सोए। आप जपाए जपै सो ना हो आप गावाए सो हर गुण गाओ। प्रभ कृपा ते होए प्रगास प्रभु दया ते कमल विगास। प्रभ सो प्रसन्न बसै मन सोए प्रभ दया ते मत उत्तम होए। सब निधान प्रभ तेरी मया आपो कछु न किन्हू लया। जित जित लाभ हो तित लगे हर नाथ नानक इनकै कछु न हाथ। सलोक अगम अगाध पार ब्रह्म सोए जो जो कहे सो मुक्ता होए। सुन मीता नानक बिनवंता साध जिना की आचर्य कथा। अष्टपदी साध कै संग मुख उज्जल होत साध संग मल सगली खोत। साध कै संग मिटै अभिमान साध कै संग प्रगटै सो ज्ञान। साध कै संग बुझै प्रभ नेरा साध संग सब होत नबेरा। साध कै संग पाए नाम रतन साध कै संग एक ऊपर जतन। साध की महिमा वरनै कौन प्राणी नानक साध की शोभा प्रभ माहे समानी। साध कै संग अगोचर मिलै साध कै संग सदा प्रफुल्लै। साध कै संग आवै बस पंचा साध संग अमृत रस पुंचा। साध संग होए सब की रेन साध कै संग मनोहर बैन। साध कै संग न कतहू तावै साध संग अस्थित मन पावै। साध कै संग माया ते पिन साध संग नानक प्रभ सो प्रसन्न। साध संग दुश्मन सब मीत साधु कै संग महापुनीत। साध संग किस्यों नहीं बैर साध कै संग न बीगा पैर। साध कै संग नाही को मंदा साध संग जाने परमानंदा। साध कै संग नाही हौ ताप साध कै संग तजै सब आप। आपे जाने साध बढ़ाई नानक साध प्रभु बन आई। साध कै संग न कबू तावै साध कै संग सदा सुख पावै। साध संग बस्त अगोचर लहै साधु कै संग अजर सहै। साध कै संग बसै थान ऊचै साधु कै संग महल पहुचै। साध कै संग दृढ़ सब धर्म साध कै संग केवल पार ब्रह्म। साध कै संग पाए नाम निधान नानक साधु कै कुर्बान। साध कै संग सब कुल उदारै साध संग साजन मीत कुटुंब निस्तारै। साधु कै संग सो धन पावै जिस धन ते सब को वरसावै। साध संग धर्म राय करे सेवा साध कै संग शोभा सुर देवा। साधु कै संग पाप पलायन, साध संग अमृत गुण गायन, साध कै संग सब थान गम, नानक साध कै संग सफल जना।
1: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
2: 1550 KRPI Radio ते चल रहा है लाइव फ्रॉम गुरु नानक सिख गुरुद्वारा साहिब स्कॉट रोड
0: से। फल पावे साध का संग न बिरथा जावे, पार ब्रह्म साध हृदय बसे, नानक उधरे साध सुन रसे, साध का संग सुनो हर नाव, साध संग हर के गुण गाओ, साध का संग न मनते बिसरे, साध संग सर पर निस्तरे, साध का संग लगे प्रभ मीठा, साधु का संग कट कट डीठा, साध संग पाए आज्ञाकारी, साध संग गत पई हमारी, साध के संग मिटे सब रोग, नानक साध पेटे संजोग, साध की महिमा वेद न जान है, जेता सुन है तेता बखियान है, साध की उपमा तेह गुण ते दूर, साध की उपमा रही भरपूर, साध की शोभा का नाही अंत, साध की शोभा सदा बेअंत, साध की शोभा ऊंचते ऊंची, साध की शोभा मूचते मूची, साध की शोभा साध बन आई, नानक साध प्रभ भेद ना पाई, श्लोक मन साचा मुख साचा सोए, अवर न पेखै एक बिन कोए, नानक ए लक्षण ब्रह्म ज्ञानी होए, अष्टपदी ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेप, जैसे जल मह कमल अलेप, ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्दोख, जैसे सूर सर्ब कौ शोक, ब्रह्म ज्ञानी कै दृष्ट समान, जैसे राज रंक कौ लागै तुल पवान, ब्रह्म ज्ञानी कै तीरज एक, ज्यों वसुधा कौ खोदै कौ चंदन लेप, ब्रह्म ज्ञानी का यह गुनाओ, नानक ज्यों पावक का सहज सुभाओ, ब्रह्म ज्ञानी निर्मल ते निर्मला, जैसे मैल न लागै जला, ब्रह्म ज्ञानी कै मन होए प्रगास, जैसे तर उपर आकाश, ब्रह्म ज्ञानी कै मित्र सत्र समान, ब्रह्म ज्ञानी कै नाही अभिमान, ब्रह्म ज्ञानी ऊंचते ऊंचा, मन अपना है सब ते नीचा, ब्रह्म ज्ञानी से जन पए, नानक जिन प्रभ आप करे, ब्रह्म ज्ञानी सगल की रीना, आत्मरस ब्रह्म ज्ञानी चीना, ब्रह्म ज्ञानी की सब ऊपर माया, ब्रह्म ज्ञानी ते कछ बुरा न पया, ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी, ब्रह्म ज्ञानी की दृष्ट अमृत बरसी, ब्रह्म ज्ञानी बंधन ते मुक्ता, ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल युगता, ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान, नानक ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान, ब्रह्म ज्ञानी एक ऊपर आस, ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश, ब्रह्म ज्ञानी कै गरीबी समाहा, ब्रह्म ज्ञानी पर उपकारो माहा, ब्रह्म ज्ञानी कै नाही तंदा, ब्रह्म ज्ञानी ले तावत बंधा, ब्रह्म ज्ञानी कै होय सुपला, ब्रह्म ज्ञानी सुफल फला, ब्रह्म ज्ञानी संग सगल उदार, नानक ब्रह्म ज्ञानी जपै सगल संसार, ब्रह्म ज्ञानी कै एकै रंग, ब्रह्म ज्ञानी कै बसै प्रभ संग, ब्रह्म ज्ञानी कै नाम आधार, ब्रह्म ज्ञानी कै नाम प्रवार, ब्रह्म ज्ञानी सदा सर जागत, ब्रह्म ज्ञानी अहं बुद्ध त्यागत, ब्रह्म ज्ञानी कै मन परमानंद, ब्रह्म ज्ञानी कै घर सदा आनंद, ब्रह्म ज्ञानी सुख सहज निवास, नानक ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश, ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का बेता, ब्रह्म ज्ञानी एक संग हेता, ब्रह्म ज्ञानी कै होए अचिंत, ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मंत, ब्रह्म ज्ञानी जिस करै प्रभ आप, ब्रह्म ज्ञानी का बड़ प्रताप, ब्रह्म ज्ञानी का दर्श बड़ भागी पाई, ब्रह्म ज्ञानी कौ बल बल जाइए, ब्रह्म ज्ञानी कौ खोज है महेश्वर, नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर, ब्रह्म ज्ञानी की कीमत ना है, ब्रह्म ज्ञानी कै सगल मन माहे, ब्रह्म ज्ञानी का कौन जाने भेद, ब्रह्म ज्ञानी कौ सदा आदेश, ब्रह्म ज्ञानी का कथिया न जाय अदाक्षर, ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकुर, ब्रह्म ज्ञानी की मित कौन बखाने, ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जाने, ब्रह्म ज्ञानी का अंत न पार, नानक ब्रह्म ज्ञानी कौ सदा नमस्कार, ब्रह्म ज्ञानी सब सृष्टि का कर्ता, ब्रह्म ज्ञानी सद जीव है नहीं मरता, ब्रह्म ज्ञानी मुक्त जुगत जीव का दाता, ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरख विधाता, ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का नाथ, ब्रह्म ज्ञानी का सब ऊपर हाथ, ब्रह्म ज्ञानी का सगल आकार, ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार, ब्रह्म ज्ञानी की शोभा ब्रह्म ज्ञानी बनी, नानक ब्रह्म ज्ञानी।

जिसका मन पार ब्रह्म का निवास, तिसका नाम सत राम दास, आत्म राम तिस नदरी आया, दास दसंतन पाए तिन पाया, सदा निकट निकट हर जान, सो दास दर्ग है प्रमाण, अपने दास को आप कृपा करे, तिस दास को सब सुझ ही परे, सगल संग आत्म उदास, ऐसी जुगत नानक राम दास, प्रभु की आज्ञा आत्म हितावै, जीवन मुक्त सौ कहावै, तैसा हर्ख तैसा उस सोग, सदा आनंद तह नहीं वियोग, तैसा स्वर्ण तैसी उस माटी, तैसा

प्रकार नानक रचना प्रभ रचे बहुविध अनेक प्रकार अष्टपदे कई कोट होए पूजारी कई कोट आचार व्यवहारी कई कोट पै तीर्थवासी कई कोट बन प्रमह उदासी कई कोट वेद के स्रोते कई कोट तपीसर होते कई कोट आत्म ध्यान तार है कई कोट कब का विचार है कई कोट नवतन नाम ते आव है नानक करते का अंत न पाव है कई कोट पै अभिमानी कई कोट अंध अज्ञानी कई कोट किरपन कठोर कई कोट अपिग आत्म निकोर कई कोट पर दर्भ कौहिर है कई कोट पर दुख न करहै कई

कई कोट सिद्ध जति जोगी कई कोट राजे रस भोगी कई कोट पंखी सर्फ उपाए कई कोट पाथर बिरख निप जाए कई कोट पवन पाणी बैसंतर कई कोट देश भूमंडल कई कोट ससियर सूर नक्षत्र कई कोट देव दानव इंद्र सिर चत्र सगल समग्री अपने सूत धारै नानक जिस जिस भावै तिस तिस निस्तारै कई कोट राजस तामस सातक कई कोट वेद पुराण सिमर

कई कोट तप्त के बेते सदा निहार है एको नेत्रे कई कोट नाम रस पीव है अमर पय सत सद ही जीव है कई कोट नाम गुण गाव है आत्म रस सुख सह समाव है अपने जन को सास सास मारे नानक ओए परमेश्वर के प्यारे श्लोक करण कारण प्रभ एक है दूसर नाहीं को नानक तिस बलिहारण है

निवाज जाका दृष्ट कशु न आवै तिस तत्काल दह दिस प्रगटावै जाको अपनी करै बखशीस ताका लेखा न गनै जगदीश जियो पिंड सब तिसकी रास घट घट पूर्ण।

वहां क्रोध विकराल, कबहू सर्ब की हो तरवाल, कबहू होए बह बड़ राजा, कबहू पेखारी नीच का साजा, कबहू आप कीर्त में आवे, कबहू भला भला कहावे, ज्यो प्रभ राख तिव ही रह, गुरप्रसाद नानक सच कह, कबहू होए पंडित करे बखियान, कबहू मौन तारी लावे ध्यान, कबहू तट तीर्थ स्नान, कबहू सिद्ध साधक मुख ज्ञान, कबहू कीट हस्त पतंग होए जिया, अनक जोन परमै परमिया, नाना रूप ज्यो स्वंगी दिखावे, ज्यो प्रभ पावै तिवै नचावे, जो तिस पावै सोई होए, नानक दूजा अवर न कोए, कबहू साध संगत इहु पावै, उस स्थान ते बहर न आवै, अंतर होए ज्ञान प्रगास, उस स्थान का नहीं विनास, मन तन नाम रते एक रंग, सदा बस है पार ब्रह्म कै संग, ज्यो जल मह जल आए खटाना, त्यों ज्योति संग ज्योत समाना, मिट गए गवन पाए विश्राम, नानक प्रभ कै सद कुर्बान, सलोक सुखी बसै मस्कीनिया, आप निवार तले बड़े बड़े अहंकारियां, नानक गर्भ गले अष्टपदी।

अनक तपस्या करे अहंकार, नरक सुर्ग फिर अवतार, अनक जतन कर आत्म नहीं द्रवै, हर दरगह कौ कैसे गवै, आपस कौ जो भला कहावै, तिसे भलाई निकत न आवै, सर्व की रेन जाका मन होए, कौ नानक ताकी निर्मल सोए, जब लग जाने मुझते कछ होए, तब इसको सुख ना ही कोए, जब ए जाने मैं किश करता, तब लग गर्भ जोन मैं फिरता, जब तारै को बैरी मीत, तब लगने चलना ही चीत, जब लग मोह मग्न संगमाए, तब लग धर्म राय दे सजाए, प्रभ कृपा ते बंधन टूटे, गुर प्रसाद नानक हो छूटे, सहस खटे लख को उठतावै, तृप्त आवै माया पाछै पावै, अनक भोग बिखिया के करै, नह तृप्तावै खप खप मरै, बिना संतोख नहीं को राजै, सुपन मनोरथ बिरथे सब काजै, नाम रंग सर्व सुख होए, बड़भागी किसै प्राप्त होए।

जैसी दृष्ट करे तैसा होए, आपे आप आप प्रभ सोए। जो किस कीनो सो अपने रंग, सब ते दूर सब हूं कै संग। बूझे देखे करे विवेक, आपे एक आपे अनेक। मरे न बिन सयावे न जाए, नानक सद ही रहया समाए। आप उपदेसे समझे आप, आपे रचया सब कै साथ। आप कीनो अपन विस्तार, सब कछ उसका ओह करना हार। उसते पिन कहो किछ होए, थान तनंतर एक कै सोए।

अवनहार स्वामी सगल कटा के अंतर जामी अपनी गतमित जान हो आपे आपन संग आप प्रवराते तुमरी उस्त तुमते होए नानक अवर न जान सकोए। सर्व धर्म है श्रेष्ठ धर्म हर को नाम जप निर्मल कर्म सगल क्रिया में उत्तम क्रिया साध संग दुर्मत मल हिरिया सगल उद्दम में उद्दम पला हर का नाम जप हो जी सदा सगल बाणी में अमृत बाणी हर को जस सुन रसन बखानी सगल थान ते ओह उत्तम थान नानक जिहे कट वसै हर नाम। सलोक

नावै पत जाए अष्टपदी दस वस्तु ले पाछै पावै एक वस्त कारण विखोट गवावै एक पी ना दे दस पी हिरले तो मूड़ा कहो कहां करे जिस ठाकुर सियो नाही चारा ताको की जय सद नमस्कारा जाके मन लागा प्रभ मीठा सर्व सुख ताहु मन बूठा जिस जन अपना हुक्म मनाया सर्व थोक नानक तिन पाया अगनत साहु अपनी देरास खात पीत बरत अनंत उलास अपनी अमान कछ बाहर साहुले अज्ञानी मन रोस करे अपनी प्रतीत आप ही खोवे बाहर उसका विश्वास न होवे जिसकी वस्त तिस आगे रखे प्रभु की आज्ञा मन मत है उसते चौगुण करे निहाल नानक साहिब सदा दयाल अनक भांत माया के हेत सर पर होवत जान अनेत बिरख की छाया स्यों रंग लावे ओ बिनसे ओ मन पछतावे जो दिसे सो चलनहार लपट रहे होते हैं अंध अंधार बटाऊ स्यों जो लावे ने ताको हाथ न आवे के हे मन हर के नाम के प्रीत सुखदाई कर कृपा नानक आप लय लाई मिथ्या तन तन कुटुंब सबाया मिथ्या होमै ममता माया मिथ्या राज जोवन तन माल मिथ्या काम क्रोध विकराल मिथ्या रथ हस्ती असव वस्त्रा मिथ्या रंग संग माया पेख हस्ता मिथ्या त्रोह मोह अभिमान मिथ्या आपस ऊपर करत गुमान अस्थिर भगत साध की सरन नानक जप जप जीवै हर के चरण मिथ्या श्रवण पर निंदा सुनै मिथ्या हस्त पर दब कौ हिर है मिथ्या नेत्र पेखत पर त्रै रूपाद मिथ्या रसना भोजन अंसवाद मिथ्या चरण पर विकार कौ ताव है मिथ्या मन पर लोभ लुभाव है मिथ्या तन नहीं पर उपकारा मिथ्या बास लेत विकारा बिन बूझे मिथकार इसकी सीख तरह संसार जो तुम पाने तिन प्रभ जाता नानक उन जन चरण प्राता करो बेनती पार ब्रह्म सब जान है अपना किया आप मन है आप है आप करत निबेरा किसै दूर जनावत किसै बुझावत नेरा उपाव सियानप सगलते रहत सब कछ जान है आत्म की रहत जिस पावै तिस लय लड़ लाए थान थनंतर रहया समाए

अष्टपदे जय प्रसाद छत्ते अमृत खाह तिष्ठाकुर कौ रख मन माह। जय प्रसाद सुगंधत तन लाभ है तिसको सिमरत परमगत पाव है। जय प्रसाद बसह सुख मंदर तिसह ते आए सदा मन अंदर। जय प्रसाद गृह संग सुख बसना आठ पहर सिमरो तिस रसना। जय प्रसाद रंग रस भोग नानक सदा त्याई है त्यावन जोग। जय प्रसाद पाठ पटंबर हंडाव है तिसह त्याग कत अबर लुभाव है। जय प्रसाद सुख सेज सोई जय मन आठ पहर ताका जस गावी जय। जय प्रसाद तुझ सब को मान है मुख ताको जस रसन बखान है। जय प्रसाद तेरो रहता धर्म मन सदा

असल हस्त असवारी मन तिस प्रभ को कबहु न बिसारी जे प्रसाद बाग मिलख तना राख प्रोए प्रभ अपने मना जिन तेरी मन बंत बनाई उठत बैठत

मन आठ पहर कर तिसका ध्यान, जे प्रसाद तुआ चार व्यवहारी, तिस प्रभु को सास सास चितारी, जे प्रसाद तेरा सुंदर रूप, सो प्रभ सिमरो सदा अनूप, जे प्रसाद तेरी निकी जात, सो प्रभ सिमर सदा दिन रात, जे प्रसाद तेरी पत्र है, गुर प्रसाद नानक जस कहै, जे प्रसाद सुन है कर्ण नाद, जे प्रसाद पेख है बिस्माद, जे प्रसाद बोल है अमृत रसना, जे प्रसाद सुख सहज जे बसना, जे प्रसाद हस्त कर चल है, जे प्रसाद संपूर्ण फल है, जे प्रसाद परम गत पाव है, जे प्रसाद सुख सहज समाव है, ऐसा प्रभ त्याग अवर कत लग हो, गुर प्रसाद नानक मन जाग हो, जे प्रसाद तू प्रगट संसार, इस प्रभ को मूल न मन हम विसार, जे प्रसाद तेरा प्रताप, मेरे मन मूड तू ताका जाप, जे प्रसाद तेरे कार्य पूरे, इसे जान मन सदा हजूरे, जे प्रसाद तू पाव है साच, रे मन मेरे तू ता स्यों राच, जे प्रसाद सब की गत होए, नानक जाप जपै जप सोए, आप जपाए जपै सो ना हो, आप गावाए सो हर गुण गाओ, प्रभु कृपा ते होए प्रगास, प्रभु दया ते कमल बिगास, प्रभु सो प्रसन्न बसै मन सोए, प्रभु दया ते मत उत्तम होए, सब निधान प्रभु तेरी मया, आपो कछु न किन्हू लया, जित जित लाभ हो तित लगे हर नाथ, नानक इनकै कछु न हाथ। श्लोक अगम अगाध पार ब्रह्म सोए, जो जो कहे सो मुक्ता होए, सुन मीता नानक बिनवंता, साध जिना की अचरज कथा अष्टपदी, साध कै संग मुख उज्जल होत, साध संग मल सगली खोत, साध कै संग मिटै अभिमान, साध कै संग प्रगटै सो ज्ञान, साध कै संग बुझै प्रभ नेरा, साध संग सब होत नबेरा, साध कै संग पाए नाम रतन, साध कै संग एक ऊपर जतन, साध की महिमा वरनै कौन प्राणी, नानक साध की शोभा प्रभ माहि समानी, साध कै संग अगोचर मिलै, साध कै संग सदा प्रफुल्लै, साध कै संग आव है बस पंचा, साध संग अमृत रस पुंचा, साध संग होए सब की रेन, साध कै संग मनोहर बैन, साध कै संग न कतहु पावै, साध संग अस्थित मन पावै, साध कै संग माया ते पिन, साध संग नानक प्रभ सो प्रसन्न, साध संग दुश्मन सब मीत, साधु कै संग महापुनीत, साध संग किस्यो नहीं बैर, साध कै संग न बीगा पैर, साध कै संग नाही को मंदा, साध संग जाने परमानंदा, साध कै संग नाही हों ताप, साध कै संग तजै सब आप, आपे जाने साध बढ़ाई, नानक साध प्रभु बने आई, साध कै संग न कभू तावै, साध कै संग सदा सुख पावै, साध संग बस्त अगोचर लहै, साधु कै संग अजर सहै, साध कै संग बसै थान ऊचै, साधु कै संग महल पहुचै, साध कै संग दृढ़ सब धर्म, साध कै संग केवल पार ब्रह्म, साध कै संग पाए नाम निधान, नानक साधु कै कुर्बान, साध कै संग सब कुल उधारै, साध संग साजन मीत कुटुंब निस्तारै, साधु कै संग सो धन पावै, जिस धन ते सब को वरसावै, साध संग धर्म राय करे सेवा, साध कै संग शोभा सुर देवा, साधु कै संग पाप पलायन, साध संग अमृत गुण गायन, साध कै संग सब थान गम, नानक साध कै संग सफल जनम, साध कै संग नहीं कछ काल, दर्शन भेट होत निहाल, साध कै संग कलूखत हरै, साध कै संग नरक पर हरै, साध कै संग इहा उहा सुहेला, साध संग बिछुरत हर मेला, जो इच्छै सोई फल पावै, साध कै संग न बिरथा जावै, पार ब्रह्म साध रिद बसै, नानक उधरै साध सुन रसै, साध कै संग सुनो हर नाओ, साध संग हर के गुण गाओ, साध कै संग न मनते बिसरै, साध संग सर पर निस्तरै, साध कै संग लगै प्रभ मीठा, साधु कै संग घट घट डीठा, साध संग पै आज्ञाकारी, साध संग गत पई हमारी, साध कै संग मिटे सब रोग, नानक साध भेटे संजोग, साध की महिमा वेद न जान है, जेता सुन है तेता बखियान है, साध की उपमा तेह गुण ते दूर, साध की उपमा रही भरपूर, साध की शोभा का नाही अंत, साध की शोभा सदा बेअंत, साध की शोभा ऊंचते ऊंची, साध की शोभा मूचते मूची, साध की शोभा साध बन आई, नानक साध प्रभ भेद न पाई। श्लोक मन साचा मुख साचा सोए, अवर न पेखै।

एकस बिन कोए नानक ए लक्षण ब्रह्म ज्ञानी होए अष्टपदी ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेप जैसे जल मह कमल अलेप ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्दोख जैसे सूर सर्ब कौ सोक ब्रह्म ज्ञानी कह दृष्ट समान जैसे राज रंक कौ लागै तुल पवान ब्रह्म ज्ञानी कह तीरज एक ज्यों वसुधा कौ खोदै कौ चंदन लेप ब्रह्म ज्ञानी का यह गुनाओ नानक ज्यों पावक का सहज सुभाओ ब्रह्म ज्ञानी निर्मल ते निर्मला जैसे मैल न लागै जला ब्रह्म ज्ञानी कह मन होए प्रगास जैसे तर उपरे आकाश ब्रह्म ज्ञानी कह मित्र सत्र समान ब्रह्म ज्ञानी कह नाही अभिमान ब्रह्म ज्ञानी ऊचते ऊंचा मन अपना है सब ते नीचा ब्रह्म ज्ञानी से जन पए नानक जिन प्रभ आप करे ब्रह्म ज्ञानी सगल की रीना आत्मरस ब्रह्म ज्ञानी चीना ब्रह्म ज्ञानी की सब ऊपर माया ब्रह्म ज्ञानी ते कछ बुरा न पया ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी ब्रह्म ज्ञानी की दृष्ट अमृत बरसी ब्रह्म ज्ञानी बंधन ते मुक्ता ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल युगता ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान नानक ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान ब्रह्म ज्ञानी एक ऊपर आस ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश ब्रह्म ज्ञानी कह गरीबी समाहा ब्रह्म ज्ञानी पर उपकारो माहा ब्रह्म ज्ञानी कह नाही धंधा ब्रह्म ज्ञानी ले धावत बंधा ब्रह्म ज्ञानी कह होय सुफला ब्रह्म ज्ञानी सुफल फला ब्रह्म ज्ञानी संग सगल उधार नानक ब्रह्म ज्ञानी जपै सगल संसार ब्रह्म ज्ञानी कह एक रंग ब्रह्म ज्ञानी कह बसै प्रभ संग ब्रह्म ज्ञानी कह नाम आधार ब्रह्म ज्ञानी कह नाम परवार ब्रह्म ज्ञानी सदा सर जागत ब्रह्म ज्ञानी अहंग बुद्ध त्यागत ब्रह्म ज्ञानी कह मन परमानंद ब्रह्म ज्ञानी कह घर सदा आनंद ब्रह्म ज्ञानी सुख सहज निवास नानक ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का बेता ब्रह्म ज्ञानी एक संग हेता ब्रह्म ज्ञानी कह होए अचिंत ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मंत ब्रह्म ज्ञानी जिस करै प्रभ आप ब्रह्म ज्ञानी का बड़ प्रताप ब्रह्म ज्ञानी का दर्श बड़ भागी पाई ब्रह्म ज्ञानी कौ बल बल जाइय ब्रह्म ज्ञानी कौ खोज है महेश्वर नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर ब्रह्म ज्ञानी की कीमत ना है ब्रह्म ज्ञानी कह सगल मन माह ब्रह्म ज्ञानी का कौन जान भेद ब्रह्म ज्ञानी कौ सदा आदेश ब्रह्म ज्ञानी का कथिया न जाय अदाक्षर ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकुर ब्रह्म ज्ञानी की मित कौन बखाना ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जान ब्रह्म ज्ञानी का अंत न पार नानक ब्रह्म ज्ञानी कौ सदा नमस्कार ब्रह्म ज्ञानी सब सृष्टि का करता ब्रह्म ज्ञानी सर जीव है नहीं मरता ब्रह्म ज्ञानी मुक्त जुगत जीव का दाता ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरख विधाता ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का नाथ ब्रह्म ज्ञानी का सब ऊपर हाथ ब्रह्म ज्ञानी का सगल आकार ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार ब्रह्म ज्ञानी की शोभा ब्रह्म ज्ञानी बनी नानक ब्रह्म ज्ञानी।

कई कोट सिद्ध जति जोगी, कई कोट राजे रस भोगी, कई कोट पंखी सर्फ उपाए, कई कोट पाथर बिरक निप जाए, कई कोट पवन पाणी बैसंत्र, कई कोट देश भू मंडल, कई कोट ससियर सूर नक्षत्र, कई कोट देव दानव इंद्र सिर चत्र, सगल समग्री अपने सूत धारै, नानक जिस जिस भावै तिस तिस निस्तारै, कई कोट राजस तामस सातक, कई कोट वेद पुराण सिमर

निवाज जाका दृष्ट कशु न आवै तिस तत्काल दह दिस प्रगटावै जाको अपनी करै बखशीस ताका लेखा न गनै जगदीश जियो पिंड सब तिसकी रास घट घट पूर्ण।

कभू महा क्रोध विकराल, कभू सर्व की होतरवाल, कभू होए बह बड़ राजा, कभू पेखारी नीच का साजा, कभू आप कीर्त में आवे, कभू भला भला कहावे, ज्यो प्रभ राख तिव ही रह, गुरप्रसाद नानक सच कह, कभू होए पंडित करे बखियान, कभू मौन तारी लावे ध्यान, कभू तट तीर्थ स्नान, कभू सिद्ध साधक मुख ज्ञान, कभू कीट हस्त पतंग होए जिया, अनक जोन पर मैं परमिया, नाना रूप ज्यो स्वांगी दिखावे, ज्यो प्रभ पावे तिवै नचावे, जो तिस पावे सोई होए, नानक दूजा अवर न कोए, कभू साध संगत इहु पावे, उस स्थान ते बहर न आवे, अंतर होए ज्ञान प्रगास, उस स्थान का नहीं विनास, मन तन नाम रते एक रंग, सदा बस है पार ब्रह्म कै संग, ज्यो जल मह जल आए खटाना, त्यों ज्योति संग ज्योत समाना, मिट गए गवन पाए विश्राम, नानक प्रभ कै सद कुर्बान। सलोक सुखी बसै मस्कीनिया, आप निवार तले बड़े बड़े अहंकारिया, नानक गर्भ गले अष्टपदी।

जैसी दृष्ट करे तैसा होए, आपे आप आप प्रभ सोए। जो किस कीनो सो अपने रंग, सब ते दूर सब हूं कै संग। बूझे देखे करे विवेक, आपे एक आपे अनेक। मरे न बिन सै आवे न जाए, नानक सद ही रहया समाए। आप उपदेसै समझै आप, आपे रचिया सब कै साथ। आप कीनो अपन विस्तार, सब कछ उसका ओह करने हार। उसते पिन कहो किछ होए, थान तनंतर एक कै सोए। अपने चलते आप करने हार, कौत करे रंग अपार। मन में आप मन अपने माहे, नानक कीमत कह न जाए। सत सत सत प्रभ स्वामी, गुरप्रसाद किने बख्यानी। सच सच सच सब कीना, कोट मध्ये किने बिरले चीना। भला भला भला तेरा रूप, अत सुंदर अपार अनूप। निर्मल निर्मल निर्मल तेरी बाणी, कट कर सुनी सर्व बख्याणी। पवित्र पवित्र पवित्र पुनीत, नाम जपै नानक मन प्रीत। श्लोक संत सरन जो जन परै, सो जन उदरनहार। संत की निंदा नानका, बहुर बहुर अवतार। अष्टपदे संत का दुखन आरजा कटै, संत का दुखन जमते नहीं छुटै। संत का दुखन सुख सब जाए, संत का दुखन नरक मह पाए। संत का दुखन मत होए मलीन, संत का दुखन शोभा ते हीन। संत के हते को रखे न कोए, संत का दुखन थान भ्रष्ट होए। संत कृपाल कृपा जे करै, नानक संत संग निंदक पीतरै। संत का दुखन ते मुख पवै, संतन कै दुखन काग ज्यों लवै। संतन कै दुखन सर्प जोन पाए, संत कै दुखन त्रिगत जोन किरमाए। संतन कै दुखन तृष्णा मह जलै, संत कै दुखन सब को चलै। संत कै दुखन तेज सब जाए, संत कै दुखन नीच नीच आए। संत दोखी का थाओ को नाहे, नानक संत पावै ता ओए पी गत पाए। संत का निंदक महा अतताई, संत का निंदक खिन टिक न पाए। संत का निंदक महा हत्यारा, संत का निंदक परमेश्वर मारा। संत का निंदक राज तेहीन, संत का निंदक दुखिया अरदीन। संत के निंदक को सर्ब रोग, संत के निंदक को सदा बिजोग। संत की निंदा दोख मह दोख, नानक संत पावै ता उसका पी होए मोख। संत का दोखी सदा अपवित, संत का दोखी किसै का नहीं मित। संत के दोखी को डाल लग गए, संत के दोखी को सब त्याग गए। संत का दोखी महा अहंकारी, संत का दोखी सदा बिकारी। संत का दोखी जन्मै मरै, संत की दुख ना सुख ते टरै। संत के दोखी को नाही ठाओ, नानक संत पावै ता लय मिलाए। संत का दोखी अध बीच ते टूटै, संत का दोखी किता काज ना पहुँचै। संत के दोखी का उद्यान परमाइयै, संत का दोखी उजड़ पाइयै। संत का दोखी अंतर ते थोथा, ज्यों सास बिना मृतक की लोथा। संत के दोखी की जड़ किछ नाहि, अपन बीज आपे ही खाहि। संत के दोखी को अवरना राखन हार, नानक संत पावै ता लए उबार। संत का दोखी इउं बिललाए, ज्यों जल बिहून मछली तड़फड़ाए। संत का दोखी भूखा नहीं राजै, ज्यों पावक ईंधन नहीं त्रापै। संत का दोखी छुटै अकेला, ज्यों बू आड़ तिल खेत माहे दोहेला। संत का दोखी धर्म ते रहत, संत का दोखी सद मिथिया कहत। किरत निंदक का तुरी पया, नानक ज्योतिष पावै सोई थिया। संत का दोखी बिगड़ रूप हो जाए, संत के दोखी को दरगह मिलै सजाए। संत का दोखी सदा सहकाइयै, संत का दोखी न मरै न जीवाइयै। संत के दोखी की पूजै न आसा, संत का दोखी उठ चलै निरासा। संत का दोख न तृष्टै कोए, जैसा पावै तैसा कोई होए। पया कीर्तना मिटै कोए, नानक जानै सच्चा सोए। सब घट तिसके ओह करनै हार, सदा सदा तिसको नमस्कार। प्रभ की उस्तत करो दिन रात, इसहि ते आवो सास गिरास। सब कछ वरतै तिसका की।

0: राम नाम संतन कर पाया, तज अभिमान लेहो मन मोल, राम नाम हृदय महतोल, लाल खेप संत है संत।
1: 1550 KRPI रेडियो ते तुसी सुन रहे सी लाइव फ्रॉम गुरु नानक सिख गुरुद्वारा साहिब स्कॉट रोड सरी।
2: यू आर लिसनिंग टू KRPI 1550 रेडियो फर्नडेल वाशिंगटन।

कर्ता पुरुष निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुरु प्रसाद। मैं अछूते विषय नु आज विचार दे रहा हूं, क्यों लगा हूं, वो है चार युग। वैसे से भारत की मनीषा करीबन करीबन मनुखता नु हर समय चार हिस्सों में वंडती रही है। उन्हें जीवन के ढंग भी चार वर्ते, जैसे क्षत्रिय ब्राह्मण शूद्र वैश्य। ये चार वर्ण जीवन के चार ढंग, फिर चार आश्रम ब्रह्मचारी गृहस्थी बानप्रस्थी सन्यासी। हैरानगी है पुराणा मत सनातन मत सबके मूल ग्रंथ भी चार ने, जो चार वेद कहलाते हैं, श्याम वेद युग रजत अथर्वण ब्रह्मे मुख माया है त्रैगुण। ऋग्वेद है, शाम वेद है, यजुर्वेद है, अथर्वण वेद। धन गुरु नानक देव जी महाराज ने भी इस विषय में अपने विचारों में प्रोया और चार युगों की बड़ी सोहनी व्याख्या जगत के सामने रखी। चार युग इन्हों कई दृष्टिकोण के नाल नापना तोलना पड़ेगा। प्रथम समय के चार युग, दूसरा स्थान के चार युग, तीसरा मन के मानसिक अवस्था दिया चार श्रेणियां जिन्हों चार युग कह सकते हैं। प्रथम समय दे ऐसा मनिया गया है कि लख डेढ़ लख साल बाद युग बदल जाते हैं और पौराणिक ग्रंथा के युगों की बकायदा उम्र भी दसी गई। इतने युगा बाद इतने समय बाद युग बदल जाता है। युग की तब्दीली समय पर खड़ी है और हर युग का अवतार भी मनाया गया। दूसरा युग स्थान, तीसरा युग मानसिक अवस्था और ये तिने पहले मैं थोड़े सामने उजागर करने लगा। प्रथम समय दे चार युग इतिहास में वाची है। आज तो 5000 साल पहले श्री राम है गए और आज तो कोई 3500 साल पहले श्री कृष्ण है गए। अंदाजन 525 साल पहले धन गुरु नानक देव जी महाराज है गए। पर ये तिने अवतार से 5000 साल की अवधि में ही हो जाते हैं। इस युग की लखां साल की उम्र
कपोल कल्पना के बिना और कुछ नहीं। क्यों श्री राम नो त्रेते युग दा अवतार मंदे हैं, 1500 साल बाद कृष्ण मौजूद हैं। श्री कृष्ण नो द्वापर युग दा अवतार मंदे ने और 3000 साल बाद गुरु नानक प्रगट हो गए और धन गुरु नानक देव जी कल युग दा अवतार मने जाते हैं। इस सारे दे सारे 5000 साल दे हो गए, ऐसा अंदाजा है इस युग की उम्र समय विच नापी है तो 2500 साल के बाद हो नहीं सकती। कुल अवधि 2500 साल। युग की तब्दीली किस तरह आती है, किवें मन लिया जाए युग बदल गया। हजारां लखां साल पहले जो सूरज सी अज भी आई है, लखां साल पहले जो चंद्रमा सी अज भी आई है, और इसे तरीके नाल धरती भी हुई है, तारे भी हुई ने, सियारे भी हुई ने, सागर भी हुई है, और किसे हद तक कुछ थोड़ी नदियां दे रदल बदल तो बाद सारिया नदियां भी हुई ने। पुराने तो पुराने इतिहास में गंगा का जिक्र है, वग रही है अज भी। पुराने इतिहास में जमुना का जिक्र है, नर्मदा का जिक्र है, वग रही ने अज भी। तो जमीन ओही है, दरिया ओही ने, सागर ओही है, सूरज चंद तारे ओही ने। तो इत्थों गल स्पष्ट हो गई, युगां दी तब्दीली मनुख दी तब्दीली ते खड़ी है, ना कि सूरज दे बदलन ते, क्योंकि सूरज ते ओही है, चंद्रमा ते ओही है, सब कुछ ओही है। ते जद सब कुछ ओही है तो फिर ते कोई इक्को ही युग होना चाहिदा है? नहीं, युगां दी तब्दीली मनुख ते खड़ी है। और युगां दी तब्दीली मनुख की सोच ते खड़ी है, विचारधारा ते खड़ी है। या इंज कह लो, युग एक विचार दा नाम है, एक मानसिक अवस्था दा नाम है। मनुख दे विचार दे बदल दया संसार बदल जाता है, युग बदल जाता है। अंदाजन 2500 साल तो बाद जीवन शैली बदल जाती है, क्योंकि मनुख दे विचार बदल जाते ने। मनुख एक ऐसा प्राणी है, सब कुछ दे तब्दीली चाहता है। परिवारक ढांचे बदलते रहे ने, राजनीति बदलती रही है, धर्म दे साधन बदलते रहे ने, कर्मकांड बदलता रहा है। और इस सब कुछ दी तब्दीली विचार दी तब्दीली ते खड़ी है, और विचार दी तब्दीली नो ही युग दी तब्दीली मनते ने। बहुगिणती दे जद मनुख दे विचार बदल जाए, रहन सहन बदल जाए, खान पान बदल जाए, तो फिर युग बदल जाता है। धन गुरु रामदास जी महाराज युगा नो अपनी बाणी विच जिस ढंग नाल दृश्यमान करते ने, वो इस तरह है। आसा महला चौथा, सत युग सब संतोख शरीरा, सत युगे सत संतोख शरीरा, पग चारे धर्म ध्यान जियो, मन तन हर गावें परम सुख पावें, हर हृदय हर गुण ज्ञान जियो, गुण ज्ञान पदार्थ हर हर किरतार्थ,
शोभा गुरुमुख होई, अंतर बाहर हर प्रभ एको, दूजा अवर न कोई। हर हर लेव हर नाम सखाई, हर दरगे पवे मान जियो। सतयुग सत संतोख शरीरा, पग चारे धर्म ध्यान जियो। धर्म तख्त ते बैठा से, तख्त ते चार पैर होंगे, धर्म चल रहा सी चार पैरां दे आसरे। धन गुरु रामदास जी महाराज फरमांदे ने, सतयुग दे धर्म दे चारों पैर मौजूद हैं। सतयुग सत संतोख शरीरा, मनुख के शरीर दे अंदर संतोख सी, सत सी, उच्चा आचरण सी, परोपकारी बिरतियां सन और संतोख सी। मन विच तन विच प्रभु दे गीत सन, संतोखी जिंदगी कल कलेश तो बची हुई सी, लिव प्रभु नाल जुड़ी हुई सी। इस तरह गुरु रामदास जी महाराज सतयुग की व्याख्या कर रहे हैं। भौतिक उन्नति भी इतनी नहीं हुई सी, लिहाजा भौतिक रुचियां भी इतनिया उजागर नहीं हुई सन। मनुख अंतर्मुखी सन, शरीर दिया लोड़ां दी पूर्ति हो गई, इसे संतुष्ट आनंदित सन। एक समय विच जी रहे मनुख सन और तरजे जिंदगी से प्राकृतिक जीवन से प्रकृति के मुताबिक जी रहे सन। सहजे सहजे बदल गई जीवन शैली, जीवन शैली बदल दी है, विचारां दी तब्दीली। धन गुरु रामदास जी महाराज इस तब्दीली में इंज बयान करते हैं। युगां दी तब्दीली का जिक्र गुरु अर्जन देव जी महाराज ने भी किया है। युगां दी तब्दीली नूं भाई गुरदास जी बड़े आलमाना ढंग नाल बयान करते हैं। और युगां दी तब्दीली नूं जिस ढंग नाल धन गुरु नानक देव जी महाराज ने दर्शाया है, पहले पातशाह जी वो विचारधारा भी आप जी के समक्ष भेंट कर रहे हैं। धन गुरु रामदास जी महाराज आसा राग विच त्रेते युग का नक्शा इस तरह खिंचते ने। त्रेता युग आया अंतर जोर वधाया, जत संयम करम कमाए जियो। त्रेते विच अहंकार उत्पन्न होया और अहंकार की पूर्ति लई हर मनुख जोरावर होण ते जोर लाण लग पिया। मैं जोरावर हो जावा, शक्तिशाली हो जावा, ताकतवर हो जावा। धार्मिक दुनिया जत सत ते संयम ते व्यर्थ दे कर्म कांड ते खड़ी हो गई। पग चौथा खिसकया त्रै पग टिकया, मन हृदय क्रोध जलाए जियो। प्रथा चाहिए, शक्ति चाहिए तो विघन तो है गए हैं, क्योंकि बहुगिनती जो जद मनुख नु शक्ति चाहिए, जोरावर होना चाहता है तो अगे वधन लई कईयां नु पछाड़ना पेगा, ते कईयां नु पछाड़ना पेगा तो कईयां नाल हिंसात्मक घटनावां भी घटनगियां, तो फिर क्रोधित होना भी उन्हां दा लाजमी है
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੋ ਤ੍ਰੇਤੇ ਦੇ ਕ੍ਰੋਧ ਦੀ ਅਗਨ ਪ੍ਰਜਵਲਿਤ ਹੋਈ। ਮਨ ਹਿਰਦੇ ਕ੍ਰੋਧ ਮਹਾਂਬਿਸਲੋਧ, ਨਿਰਪਧਾਵੇ ਲੜ ਦੁੱਖ ਪਾਇਆ। ਅੰਤਰ ਮਮਤਾ ਰੋਗ ਲਗਾਨਾ, ਹਉਮੈ ਅਹੰਕਾਰ ਵਧਾਇਆ। ਰਾਜੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਰਜਵਾੜੇ ਜਾਗਰਦਾਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਨ ਮਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਮੋਹ ਮਮਤਾ ਵੀ ਵੱਧ ਗਈ, ਅਹੰਕਾਰ ਵੀ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਕ੍ਰੋਧ ਵੀ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅਗਾਂਹ ਪ੍ਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਹਰ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੀ ਮੇਰੇ ਠਾਕੁਰ, ਬਿਖ ਗੁਰਮੁਖ ਹਰ ਨਾਮ ਲੈ ਜਾਏ ਜਿਉ। ਤੇ ਤਾ ਜੁਗ ਆਇਆ ਅੰਤਰ ਜੋਰ ਪਾਇਆ, ਜਤ ਸੰਜਮ ਕਰਮ ਕਮਾਏ ਜਿਉ। ਤ੍ਰੇਤੇ ਯੁਗ ਦੇ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅਹੰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਹਿਰ ਵੱਧ ਗਈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਇਸ ਜ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਓਹਲੇ ਹੋ ਕੇ ਲੋਕੀ ਸੰਜਮ ਅਤੇ ਜਤ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧਾ ਕੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਸਵੈਮ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨੋਬਿਰਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤ੍ਰੇਤੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਜੀਵ ਜੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੁਆਪੁਰ ਅਗਰ ਹੁਣ ਜਿਸ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਲਯੁੱਗ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਗਿਣਤੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਦੁਆਪੁਰ ਦੂਜਾ ਪੁਰ, ਤ੍ਰੇਤਾ ਤੀਜਾ ਪੁਰ ਔਰ ਸਤਯੁੱਗ ਚੌਥਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਤ੍ਰੇਤੇ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਤੀਜਾ, ਦੁਆਪੁਰ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਦੂਜਾ ਯੁੱਗ। ਕਲਯੁੱਗ ਪ੍ਰਥਮ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਸਤਯੁੱਗ ਚੌਥਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਤਯੁੱਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਥਮ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਕਲਯੁੱਗ ਚੌਥਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੋ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਗਾਥਾ ਹੈ ਉਹ ਸਤਯੁੱਗ ਤ੍ਰੇਤਾ ਦੁਆਪੁਰ ਅਤੇ ਕਲਯੁੱਗ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿਣਤੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਖਰੀ ਅਰਥ ਕਰਾਂਗੇ ਤ੍ਰੇਤੇ ਦੇ ਤਾਂ ਤੀਸਰਾ ਯੁੱਗ, ਦੁਆਪੁਰ ਦੂਜਾ ਯੁੱਗ, ਕਲਯੁੱਗ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਯੁੱਗ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਜੋ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਦੂਜਾ ਜੋ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਲੰਘ ਗਿਆ ਤੀਜਾ, ਔਰ ਜੋ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਸੀ ਚੌਥਾ। ਦੁਆਪੁਰ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜੁਗ ਦੁਆਪੁਰ ਆਇਆ ਭਰਮ ਭਰਮਾਇਆ, ਹਰ ਗੋਪੀ ਕਾਨ ਉਪਾਏ ਜਿਉ। ਤਪ ਤਾਪਨ ਤਾਪੇ ਜਗ ਪੁਨ ਆਰੰਭੇ, ਅਤ ਕਿਰਿਆ ਕਰਮ ਕਮਾਏ ਜਿਉ। ਕਿਰਿਆ ਕਰਮ ਕਮਾਇਆ ਪਗ ਦੋਏ ਖਿਸਕਾਇਆ, ਦੋਏ ਪਗ ਟਿਕੇ ਟਿਕਾਏ ਜਿਉ। ਮਹਾਂ ਜਗ ਜੋਧ ਬਹੁ ਕੀਨੇ, ਮਹਾਂ ਜਗ ਜੁਧ ਬਹੁ ਕੀਨੇ, ਵਿੱਚ ਹੋਮੇ ਪਚੇ ਪਚਾਏ ਜਿਉ। ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਗੁਰ ਸਾਧ ਮਿਲਾਇਆ, ਮਿਲ ਸਤਗੁਰ ਮਲ ਲੈ ਜਾਏ ਜਿਉ। ਜੁਗ ਦੁਆਪੁਰ ਆਇਆ ਭਰਮ ਭਰਮ ਆਇਆ, ਹਰ ਗੋਪੀ ਕਾਨ ਉਪਾਏ ਜਿਉ। ਦੁਆਪੁਰ ਯੁੱਗ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬਿਆਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਗਤ ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ,
ਬੁਲਖਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ। ਗੋਪੀਆਂ, ਕਾਂ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਸ ਲੀਲਾ ਦੇ ਪਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ। ਤਪ ਤਾਪਨਾ ਆਰੰਭ ਹੋਈ, ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਆਰੰਭ ਹੋਏ, ਔਰ ਹੰਕਾਰ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਗੇੜ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਹੰਕਾਰ ਇਤਨਾ ਚਰਮ ਸੀਮਾ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਮਹਾਂਜੱਗ ਯੁੱਧ ਬਹੁ ਕੀ ਨੇ, ਬੜੇ ਯੁੱਧ ਹੋਏ। ਵਾਕਈ ਦੁਆਪੁਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਹਾਂਭਾਰਤ ਦੇ ਯੁੱਧ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਭਾਰਤ ਹੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਚੋਟੀ ਦੇ ਸਿਆਣੇ ਮਨੁੱਖ, ਚੋਟੀ ਦੇ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ, ਚੋਟੀ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨ

लड़ाई झगड़े ही सन, और जे किधरे लड़ाई झगड़े नहीं सन ते धर्म दे खोखे कर्म कांड सन या यज्ञ ते हवन सन। इस तरह द्वापर युग दे धर्म दे सिर्फ दो पैर ही रह गए, दान रह गया और व्यर्थ दा कर्म कांड रह गया, जग रह गया। जग ते दान इन्हां दो पैरां उत्ते धर्म टिक गया, संतोख ते सत ये दो पैर उड गए। इस तरह धर्म दो पैरां ते टिक गया, समय दे गए नाल कल युग आया और ये युगां दी व्याख्या समय दे मुताबिक इस वक्त कीती जा रही है। फिर अस्थान दे, फिर मानसिक अवस्था दे, जिवें जिवें गुरबाणी ने खोलिया मैं संगत के स्रोतियां दे सामने रख रहे हैं। कल युग हर किया पग त्रै खिसकिया, पग चौथा टिके टिकाए जियो, गुर शब्द कमाया औखद हर पाया, हर कीरत हर सांत पाए जियो। हर कीरत रुत आई हर नाम वडाई, हर हर नाम खेत जमाया, कल युग बीज बीजे बिन नावे, सब लाहा मूल गवाया, जन नानक गुरु पूरा पाया, मन हृदय नाम लखाए जियो। कल युग हर किया पग त्रै खिसकिया, पग चौथा टिके टिकाए जियो। एक पैर रह गया प्रभु दी कीर्ति हरि दा जस गायन करना, इससे ही कल युग विच धर्म एक पैर दे टिक गया, बाकी ते सब कुछ उड़ पुड़ गया। कल युग दी व्याख्या द्वापुर त्रेते ते सतयुग दी व्याख्या धन गुरु रामदास जी महाराज समय दे रूपरेखा दे नाप तोल के इस तरह जो है बयान करते हैं और अपना फैसला इंज देते हैं। कल युग बीज बीजे बिन नावे, सब लाहा मूल गवाया। कल युग दे कोई भी बीज मनुख बीजे जत दा सत दा कर्म दा और तरह तरह दे साधनावां दा, लेकिन नाम ना जपे। कल युग बीज बीजे बिन नावे, सब लाहा मूल गवाया। ऐसा मनुख ते सारा ही नफा ते मूल गवा बैठेगा, क्योंकि मूल ते गल सी प्रभु दा नाम ओ ते जपना ही नहीं, और इस तरीके दे नाल व्यर्थ दे कर्मां विच फस के रह गया। धन गुरु रामदास जी महाराज ने समय की रूपरेखा जो युगों का चित्रण किया वह इस तरह है। धन गुरु नानक देव जी महाराज इसनों अपने ढंग नाल बयान करते हैं, और भगत रविदास जी महाराज से इतने तक कहते हैं सतयुग सत त्रेता जगी द्वापर पूजा चार, तीनों युग तीनों दृढ़े कल केवल नाम आधार। ठीक तिन्ने युग अपनी थां ते महान होवनगे, और मौजूदा ए कल युग इस देश से उधार केवल प्रभु दे नाम ते जप ते खड़ा। कल केवल नाम आधार। धन गुरु नानक देव जी महाराज इस तरह फरमान करते हैं सतयुग त्रेता द्वापर बणीए, कल युग उत्तम युगा माए।

ऐसी आदत बन गई है इस युग दे च निंदा दी कि हुण इसका कोई इलाज भी नहीं है। औखद सबे की तेन निंदक का दारू ना है। निंदा ऐसी जहर है, ऐसी कुड़त्तन है जिस नाल मनुख दी जबान इतनी कौड़ी हो गई है, इतनी कौड़ी हो गई है। धन गुरु नानक देव जी महाराज कहने ने तुम्मी तुम्मा विस अक धतूरा निम फल मनमुख वसे तिस जिस तू चित ना आवे। हे प्रभु, मनुख ऐसा निंदक हो गया और उसकी रसना झूठ बोल बोल के इतनी कौड़ी हो गई है। कोई तुम्मा इतना कौड़ा नहीं, निम इतनी कौड़ी नहीं, जहर इतनी कौड़ी नहीं। जिड़ा ओ हिरदा कौड़ा है जिस विच तो नहीं है ते सिर्फ निंदा ही निंदा है। धन गुरु नानक देव जी महाराज इन फरमान करते ने दौलक दुनिया वाजे वाज नारद नाचे कल का भाव जति सती कह राखे पाओ। इस युग दे च मन ते नारद बन गया है ते नारद दा कम की है चुगली इधर दी उधर उधर दी इधर। इस दौर विच मनुख दी तर्ज़े जिंदगी ऐसी बन गई है। महाराज कहंदे ने मनुख दा मन नारद है। नारद नाचे कल का भाव जति सती कह राखे पाओ। ये जत ते सत केड़ी थां ते अपना पैर टिकावेगा। मन ते नारदी होया पे है, मन ते चुगल बखील होया पे है, मन ते बड़ा परबल निंदक होया पे है। ये कलयुग दा प्रताप, समय दा प्रताप। ये धन गुरु नानक देव जी महाराज बैरूनी असर दा जिक्र पे करदे ने। दरअसल गली दे कोई बहुत वड्डी भीड़ होवे और उस विच मनुख फस जाए तो जिस पासे भीड़ जा रही है उसे पासे ही जाना पैंदा है। मनुख सुतंत्रता दे नाल अपना रस्ता नहीं चुन सकता। इतनी निंदा और इतना निंदक तो उस विच जीवदिया मनुख निंदक हो जाता है। इतना झूठ और इतने झूठिया की भीड़ इस दे चल के मनुख झूठा हो जाता है। इतने फोके कर्म कांडी और कर्म कांडियां दी भीड़ इस भीड़ दे चल के मनुख व्यर्थ दा कर्म कांडी हो जांदा है। और एते एक मन दा स्वभाव है कि एदे उते अक्सर प्रभाव पैंदा है भीड़ दा। मनुख कहिंदा है इतने सारे मनुख जो चल रहे ने ते गलत किस तरह हो सकदे ने। दरअसल बहु गिनती ही गलत हो सकती है। किसी समय महात्मा बुद्ध ने बड़ा कीमती कौल अपने चचेरे भरा दे सामने रखिया सी। आनंद बहुत वड्डी भीड़ दे कोई चंगे मनुख नहीं आंदे और चंगे मनुखां दी कोई भीड़ नहीं आंदी। बहु गिनती ते हमेशा ही गलत होगी। भीड़ हमेशा बुरियां दी होंदी है, नेक ते बहुत थोड़े ही। गीटियां ते पत्थर आम मिल सकदे ने पहाड़ां ते, हीरे ते किधर किधरे। संख ते सिपियां सागर दे तट ते भी लभ पैंदियां ने पर मोती ते किधरे किधरे ही उपलब्ध हो सकदे ने। किक्कर ते सारी धरती दे च मिलदा है पर चंदन दा वृक्ष ते किधरे किधरे। जितनी मिकदार विच कोयला निकलदा है पहाड़ां दी कुख दे चों उतना सोना नहीं। तो कल युग एक कलेश भरिया युग और कलेश व्यापक ए दुनिया बड़ी भीड़ तो मनुख दा मन कलेशमयी हो गया। झूठियां दी भीड़ विच झूठा हो गया, निंदकां दी भीड़ विच निंदक हो गया, लोभियां दी भीड़ विच लोभी हो गया है। इस तरह की भीड़ विच मनुख जी रहा है,
नारद नाचे कल का भाव, जति सती कह रखे पाओ। नारद दी तरह मन नच रहे, चुगल खोर हो गया। इथे जति अपना पैर केड़ी थां ते टिकावेगा, सारी धरती जल रही है। इथे सती केड़ी थां ते बैठना चाहेगा, सारे स्थान गंदे हो चुके हैं। तो ये समय की रूपरेखा जो प्रभावित कर रही है मनुख की तर्जे जिंदगी नु, धन गुरु नानक देव जी महाराज, धन गुरु रामदास जी महाराज, धन गुरु अर्जन देव जी महाराज और भगत रविदास ते कबीर अपने आलमाना ढंग नाल बयान करते ने। पर हुण मानसिक तल ते सतयुग, त्रेता, द्वापर ते कलयुग की व्याख्या जो गुरु नानक ते भाई गुरदास ने बयान की है, इन्हां शब्दां की व्याख्या मैं पेश कर लगा। और ये आसा दीवार का श्लोक है और भाई गुरदास जी की एक पौड़ी जिस विच भाई गुरदास जी कहंदे ने, जुग जुग मेर शरीर का वासना बद्धा आवे जाए, फिर फेर वटाइए ज्ञानी होए मर्म को पाए। ये कोई आत्म ज्ञानी होवे तो इसनु समझेगा कि समय समय दे नाल ये शरीर बदलता रहा है, बार बार जन्म होंदा रहा है और जन्म होंदा रहा है वासना करके। जितने चिर तक वासना है जन्म चलता ही रहेगा। जन्म मरण उस दिन मिट जाता है जिस दिन वासना प्रार्थना का रूप धारण कर लवे। कहिंदे ने मन ऐसा है, या वासना चलेगी या प्रार्थना चलेगी। जिस दिन मन प्रार्थी हो गया और इसके अंदर हर वक्त प्रार्थना चलन लग पई और प्रार्थना दे शुकराना धन्यवाद हे प्रभु तेरा धन्यवाद, उस दिन जन्म मरण दे ए गेट मिट जाते ने। पर वासना ते चलती है, अगर वासना पिछले जन्म दे च नहीं सी तो हुण दा ए जन्म भी नहीं हो सकता। इति वासना बद्धा आवे जाए, भाई साहब भाई गुरदास जी कहिंदे ने, जुग जुग मेर शरीर का, हर युग दे च ए मेरा मेरू शरीर, ए महान शरीर मनुख मनुखी तन बार बार आउंदा रहे। अक्सर पुन ते पाप दोवें बराबर होवन तो मनुख दा अगला जन्म मनुख दा ही आउंदा है। पाप ही पाप होन, पुन ना होवन तो मनुख पछड़ जांदा है, पिछे मुड़ जांदा है। पर ऐसा तो कोई पापी नहीं कोई थोड़े बहुत पुन ना कर दावे। कबीर सच कह रहे ने, पाप पुन दोए बहल बिसाए, पवन पूंजी परगासियो। मनुख स्वासा दी पूंजी नाल कुछ पाप खरीदता है कुछ पुन खरीदता है। तो पाप पुन बराबर होन करके मनुख दा बार बार जन्म मनुख दा ही आंदा है। और करीबन करीबन यही चांस है कि मनुख मर के मनुख होवेगा, क्योंकि पाप करता है जीवन की लालसा करके, पुन करता है इस जीवन तो मुक्त होने वास्ते। पर चूंकि दोवें कर्म बराबर रह जाते हैं तो बार बार मनुखी जन्म उपलब्ध होता है। तर्जे जिंदगी दे तौर तरीके जो बदलते ने, इस तब्दीली नू धन गुरु नानक देव जी महाराज जिस ढंग नाल बयान करते हैं मैं अर्ज कर रहा हूं।

ओंकार सतनाम कर्ता पुरुष निर्भो निर्वैर अकाल मुहूर्त अजूनी सैभं गुरु प्रसाद हे प्राणनाथ गोविंदे कृपा निधान जगत गुरु हे संसार ताप हरणे करुणा

ਮਨੁੱਖੀ ਤਨ ਦੀ ਜੋ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇਸਦਾ ਕੁਛ ਹਿੱਸਾ ਅਸਥੂਲ ਹੈ ਔਰ ਅਸਥੂਲ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜਾ ਹੈ, ਕੁਛ ਹਿੱਸਾ ਸੂਖਸ਼ਮ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਵੀ ਸੂਖਸ਼ਮ ਨੇ। ਉਂਜ ਤੇ ਅਣਗਿਣਤ ਪਦਾਰਥ ਇਸ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਚਾਰ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਤੇ ਅੰਨੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਥਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਚਾਰ ਪਦਾਰਥ ਇਹ ਨੇ, ਧਰਮ, ਅਰਥ, ਕਾਮ, ਮੋਖ। ਦੋ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਹੈ, ਪਰ ਦੋ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਅਧਿਆਤਮ ਨਾਲ ਹੈ। ਉਹ ਪਦਾਰਥ ਵੀ ਗੁਪਤ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਤਮਾ ਗੁਪਤ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰਗਟ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜੋ ਗੁਪਤ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ, ਤੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰਗਟ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਉਹ ਸੰਸਾਰ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਮਕਾਨ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਬੁਨਿਆਦਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਦਰਖਤ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੜ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਸਰੀਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਜੜ੍ਹ ਹੈ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ। ਪੱਤਿਆਂ ਦੀ, ਸ਼ਾਖਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਦੀ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਧਰਮ, ਅਰਥ, ਕਾਮ, ਮੋਖ ਕਾ ਦਾਤਾ ਪੂਰੀ ਭਈ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਵਿਧਾਤਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚਾਰ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਦਾਤਾ ਹੈ। ਇਤਨੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਦਾਤਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸਭ ਜਗਤ ਭਿਖਾਰੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਵੈਮ ਵੀ ਭਿਖਾਰੀ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਭਿਕਸ਼ਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਿਖਾਰੀ ਦੀ ਪਾਤਰ ਵਿੱਚ ਭਿਕਸ਼ਾ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜੀਵਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਉਸਦੀ ਦੇਣ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਦਾਤ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਇੰਦਰੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਉਸਦੀ ਦੇਣ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਦਾਤ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਉਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਖਰੀਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਤਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾ ਖਰੀਦਿਆ ਹੈ ਨਾ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦਾਨ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਜੋ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਬਣਾਈ ਹੈ ਨਾ ਖਰੀਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਦਾਨ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਅੱਖਾਂ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਦਾਨ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀਆਂ। ਚਸ਼ਮਾ ਅਸੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅੱਖ ਹੈ ਇਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦਾਨ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਪੱਥਰ ਦੀ ਅੱਖ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਪਰ ਇਹ ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਜੋ ਉਸਦੀ ਦੇਣ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਹੱਥ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਬਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਜੋ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਜੀਵਨ ਸਾਨੂੰ ਦਾਨ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਸੂਰਜ, ਚੰਦ, ਤਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਦਾਨ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਜਲਦੀ ਹੈ, ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿੱਲ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਨੰਤ ਕਾਲ ਤੇ ਸੂਰਜ ਅਗੰਮੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦਾਨ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਗਦੀ ਹੋਈ ਪਵਨ ਸਾਨੂੰ ਦਾਨ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ, ਪਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਦਾਨ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ, ਗ੍ਰਹਿ ਨਛੱਤਰਾਂ ਦਾ ਅਸਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ, ਚੰਦਰਮਾ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਦਾਨ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ। ਪਰਿਪੂਰਨ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਾਤਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਾਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਝੋਲੀ ਵੱਡੀ ਕਰ, ਉਹ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆਂ ਸੰਕੋਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਈ ਦਫ਼ਾ ਤੇਰੀ ਝੋਲੀ ਛੋਟੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਡੁੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਕਥਨ ਹੈ, ਤੂੰ ਗਿਲਾ ਨਾ ਕਰ, ਤੂੰ ਮੰਗ ਵੀ ਨਾ ਕਰ, ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਵਧਾ, ਆਪਣਾ ਪਾਤਰ ਵੱਡਾ ਕਰ, ਆਪਣੀ ਝੋਲੀ ਵੱਡੀ ਕਰ। ਔਰ ਜਦ ਝੋਲੀ ਵੱਡੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਭ ਕੁਛ ਤੇਰੀ ਝੋਲੀ ਚ ਪੈ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਆਣਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਝੋਲੀ ਤੇ ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੰਗਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਮੰਗਦੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਪਾਤਰ, ਯੋਗਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਉਸ ਢੰਗ ਦੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਅਗਰ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਧਨ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਇੱਜ਼ਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਮਾਣ ਮਰਿਆਦਾ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਯੋਗਤਾ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਅਗਰ ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ,
तो समझ लेना चाहिदा ए योग्यता मनुख दे कोल अजे नहीं है, इसदा इहदे कोल अजे पात्र नहीं है। तो पातशाह दी बाणी दा फरमान है, मम्मा मांगन हार याना, देन हार दे रहे हो सुजाना। जो मंगन वाला है वो ते याना है, नादान है, वो देन वाला ते बिना मंगया ही दे जांदा है। अण मंगया दान देवना, कहो नानक सच संभाल जियो, बिना मंगिया ही सानू मां बाप मिले, बिना मंगिया ही सानू ए तन मिलिया, बिना मंगिया ही सानू ए सूरज चंद तारे मिले, जमीन मिली, वगदी हुई पवन मिली, रसना मिल गई, हाथ मिल गए, पैर मिल गए। इतनी अगम्मी दौलत अगर बिना मंगिया सानू मिल सकती है तो फिर सानू अपनी योग्यता वधानी चाहिए है, और भी बहुत कुछ मिल सकता है, और भी बहुत कुछ मिल सकता है। साहिब गुरु नानक देव जी महाराज का यही फरमान, ए मनुख तू अपनी योग्यता वधा, मंग कुछ भी ना, मंगण वाला ते इयाना है, मंगण वाला ते नादान है। दरअसल ईश्वर दे नाल दो तरह दे संबंध जगत दे लोकी जोड़दे ने, कोई ईश्वर नू मंगदा है, कोई ईश्वर दे कोलो मंगदा है, ते कोई ईश्वर नू मनदा है। मनना होर गल है, मंगना होर गल है। मनना ते मंगन दे च जमीन आसमान दा फर्क है। एक कहिंदा है, हे ईश्वर मैं ते सिर्फ तेनू मनदा, तेनू मनन दे च ही मेरी खुशी है, तेनू मनन दे च ही मेरा रस है, तेनू मनन दे च ही मैनू आनंद है। ते एक कहिंदा नहीं, मैं ते ईश्वर दे कोल मंगदा। ये जिहड़ा मंगदा रिश्ता हुंदा है ये कोई बहुत वड्डा नहीं हुंदा, ये कोई बहुत खास नहीं हुंदा। कारण मंग पूरी हो जाए तां वी रिश्ता टुट जांदा है, मंग ना पूरी होवे तां वी रिश्ता टुटदा है। मंग ना पूरी होवे गिले जाग पैंदे ने, मंग पूरी हो गई तां कशिश घट जांदी है, क्योंकि जिस कशिश दा मारिया होया ए मंग रिहा सी ते नेड़े आ रिहा सी, मंग दी ते पूर्ति हो गई। इस वास्ते अक्सर देखण नूं आया है कि जिन्हां दी झोली बहुत भर गई है, जिन्हां दीआं कुछ मंगां पूरीआं हो गईआं, उन्हां दे अंदर धर्म दी कशिश, अवतारां दी कशिश, महापुरुषां दी कशिश घट जांदी है, क्योंकि मंग पूरी हो गई है। इस वास्ते अक्सर धर्म मंदरां विच दरम्याने तबके दे लोग बहुत ज्यादा आउंदे ने, जिन्हां दी मंग नाल झोरी भर गई है, बहुत कुछ मिल गया है, कई दफा वह बूआ भी भुल जांदे ने धर्म मंदरां दा। तो खैर, साहिब गुरु नानक देव जी महाराज का फरमान एक बड़ा अगम्मी शब्द है आपका। आप फरमान करते ने, हुण ताडी हर गुण गावदा जे हर प्रभ भावे। हे प्रभु मैं तेरे दर दा ढाडी हाँ गीत गाण वाला। गुरु नानक देव जी महाराज अपने आप नू किसे किसे थां शायर भी कहिंदे ने, कवि कहिंदे ने, उंज ते हर थां ते अपने आप नू दासन दास कहिंदे ने, निमाणा कहिंदन, निताणा कहिंदन। लेकिन एक थां ते अपनी शख्सियत दे संबंध च अगर कोई शब्द वरतिया है तो वह यही कि मैं शायर हाँ, मैं कवि हाँ। नानक शायर ए कहत है सच्चे परवरदिगारा। लेकिन आम शायर विच ते रब्बी शायर विच फर्क बड़ा है, अंतरा बड़ा है। ऋषि जो संस्कृत का लफ्ज है इहदे अखरी अर्थ बनदे ने कवि, ते कवि दा जे संस्कृत दे च अनुवाद करांगे तो बनेगा ऋषि। ऋषि जो है वह कवि है, जो कवि है वह ऋषि है, लेकिन फिर भी जमीन आसमान दा अंतर है। जिस दी कविता अनुभव तो आवे वह ते ऋषि है, ते जिस दी कविता सिर्फ सोच दी मुस्तहिक है, जो दिमागी तल तो निकलती है, बस वो शायर है, वो सिर्फ कवि है, वो ऋषि नहीं। अनुभव तो निकली हुई कविता इंज है जैसे झरने दा निकलिया होया जल निर्मल होंदा है, शफाफ होंदा है, ठंडा होंदा है, उहदे च रवानी होंदी है। पर जो दिमाग चो कविता निकलती है वो एक हाउस दा पानी है, छपड़ी दा पानी है, गंदे होंदे हां देर नहीं लगदी। इस वास्ते असीं देखदे हां आम कवियां दीआं कवितावां पुरानियां हो जांदियां ने, एक दफा सुनिए, दो दफा सुनिए, फिर तीजी दफा सुनन नू दिल नहीं करदा। पर महापुरुषां दी बाणी रोज रोज ही पढ़िए कदी पुराणी नहीं हुंदी। मनुख पुराणा हो सकदा है, पढ़न वाला पुराणा हो सकदा है, कलाम पुराणी नहीं हुंदी, बाणी पुराणी नहीं हुंदी। कारण
कि वह अनुभव तो निकली होंगी है, वह निरी दिमाग तो नहीं निकली होंगी। आम विचारकों का कहना है कि जिहड़ी गल सिर्फ जबान तो निकले वह कन्ना तक पहुंचती है, जो दिमाग तो निकले वह दिमाग तक पहुंचती है, और जो आत्मा तो निकले वह आत्मा तक पहुंचती है। तो आत्मा तो उही गल निकलती है जिसनू आत्मा मन है। इस गल नू मुहम्मद इकबाल ने भी कबूलिया, दिल से जो बात निकलती है असर रखती है पर नहीं ताकते परवाज मगर रखती है। जिहड़ी गल दिल दे डूंघे तल चो निकलेगी वह लाजमी दिल तक पहुंचेगी, उसका बहुत गहरा असर होगा। तो महापुरुषां दे बचन बहुत डूंघे तल तो निकलते हैं, इस वास्ते कदी पुराने नहीं होंगे। आम कवियां दियां रचनावां पुरानियां हो जांदियां ने, क्योंकि तल बहुत डूंगा नहीं, गहराई बहुत महान नहीं। तो साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज अपने आप नूं कवि कहिंदे ने, ते कहिंदे ने हे प्रभु मैं तेरे दर ते आया कुछ गीत लैके कुछ संगीत लैके। मेरे देखे ते परमात्मा दे दर तक पहुंच ही हो सकदा जिहदे कोल गीत होवे, जिहदे कोल संगीत होवे, जिहदे कोल रोणा है, जिहदे कोल पिटना है, जिहदे कोल वासना है, जिहदे कोल दुखड़े ने, उहदा परमात्मा दे दर तक पहुंचना बड़ा औखा है। परमात्मा दे दर तक ते उही पहुंच सकदा है जो गा सके, गीत गा सके, और कविता ते संगीत दियां धुनां अलाप सके। गुरु नानक गाउंदे गाउंदे सो दर तक पहुंचे ने। गुरु नानक ने गा गा के प्रभु नूं रिझाया है, गुरु नानक ने गा गा के ठग्गां नूं सज्जन बनाया है, दैतां नूं फरिश्ता बनाया है, और मनुखां दे अंदर प्रभु दी जोत जगाई है। गुरु नानक वाहिद संसार दा ऐसा धार्मिक प्रचारक है जिसने गा गा के मनुखता नूं परमात्मा दे नाल जोड़िया है। ये ठीक है परमात्मा दा कोई बहुत गहरा तप गुरु नानक ने नहीं किया, गुरु नानक ने योग साधना नहीं साधी, गुरु नानक ने प्राणायाम नहीं किया, गुरु नानक ने जल धारा नहीं की थी, गुरु नानक ने कोई लंबी चौड़ी भगती नहीं की थी, कीर्तन किया है, गाया है, पर इतने गहरे तल तो गाया है, इतनी एकाग्रता दे नाल गाया है कि गुरु नानक दा गावना ही योग बन गया, गुरु नानक दा गावना ही तप बन गया, गुरु नानक दा गावना ही भगती बन गया। पातशाह दी बड़ी सुंदर पंक्ति भी है, जोग बनिया तेरा कीर्तन गाई, जो मैं तेरा कीर्तन गाया है बस यही जोग है, यही भगती है, यही योग दी साधना है, यही योग दियां विधियां ने। तो साहिब कहिंदे ने हे परिपूर्ण परमात्मा मैं तेरे दर पे कुछ गीत लेके आया, कुछ संगीत लेके आया, तू सुन। ढहो ढाडी हर गुण गावदा जे हर प्रभ भावे, प्रभ मेरा थिर थावरी होर आवे जावे। सवाल ये पैदा होंदा है कि तू परमात्मा दे दर दे गीत संगीत लेके क्यों आया है, किसी होर दे दर ते जा। साहिब कहिंदे होर किथे मैं लेके जावां, परमात्मा ते थिर है, नैचल है, बाकी ते सब चलायमान है, मैं किथे गावां। शेख शरफ सूफी फकीर ने गुरु नानक देव जी महाराज ते सवाल किया सी, शुमा मुकाम कुजा अस्त, थोड़ा मुकाम किथे है, तुसी किथे रहिंदे हो, थोड़ा घर किथे है, शुमा मुकाम कुजा अस्त, थोड़ा घर किथे है, थोड़ा टिकाणा किथे है। उस वक्त मेरे पातशाह ने एक अगम्मी शब्द उच्चारण किया है, श्री राग विच दर्ज है। साहिब कहिंदे ने मुकाम कर घर बैसना निच नित चलने की धोक, मुकाम का पर जानिए जा रहे नेचल लोक, दुनिया कैस मुकामे कर सिदक करने खर्च बांधो लाग रहो नामे। ऐ शेख शरफ किथे मुकाम बनाइए, सब कुछ ते चलाए मान है, मैं किथे घर बनावा। दिन रव चले निस सस चले तार का लख पलोए, मुकाम ओही एक है नानका सच बगोए। साहिब कहिंदे ने जमीन चल रही है, सूरज चल रहा है, चंद्रमा चल रहा है, ग्रह नक्षत्र चल रहे ने, सब कुछ चलाए मान है, मैं अपना मुकाम बनावा ते किथे बनावा। सब कुछ चल रहा है, रुकिया या कुछ भी नहीं, रुकण दा ना ही मौत है। शरीर विच श्वास चल रहे ने, मन विच विचार चल रहे ने, जमीन चल रही है, आसमान चल रहा है, ग्रह नक्षत्र चल रहे ने, वगदी हुई पवन चल रही है, दरियावां दा जल चल रहा है। साहिब कहिंदे ने सब कुछ ते चल रहा है, रुकिया होया ते कुछ भी नहीं, ते जद रुकिया होया कुछ भी नहीं तो मैं किथे मुकाम बनावा। पर गुरु नानक देव जी महाराज कहिंदे ने ये जो सब कुछ चल रहा है,
किसे रुके हुए आधार पे चल रहे है, नहीं चल परमात्मा है, बाकी सब कुछ चल रहे है, वो केवल टिकिया हुआ है, वो नेचल है। तो साहब कहने मैं मकान किथे बनावा, सब कुछ पे चल रहे है, सब कुछ चलायमान है। शेख शरफ ने कुछ होर भी सवाल किए सन गुरु नानक दे, फकीरी चीज ऐ गुरु नानक दस सकते हो फकीर किसनों कहते ने, संत किसनों कहते ने, फकीरी की है? तो साहबा ने बड़ा सुंदर जवाब दिता, जन्म साखी दर्ज है, इब्तिदाए फकीरी फना अस्त, इंतहाए फकीरी बकास्त, किसी उच्चे आदर्श लई अपने आप नू मिटा देना और हमेशा दे लई अमर हो जाना, बस यही फकीरी दी निशानियां ने, यही संत दियां निशानियां ने। उदे जीवन दा निशाना कोई बहुत उच्चा होवे और उस उच्चे निशाने लई अपने आप नू कुर्बान कर देना, हमेशा लई अमर हो जाना, बस यही फकीर दियां सिफतां ने। इस तो इलावा होर कोई फकीर दियां सिफतां ने। साहिबा ने ऐसे गहरे रूप विच कीर्तन कीता है, इतने गहरे तल तो संगीत कढ़िया है कि आपका गावना योग बन गया, आपका गावना तप बन गया, आपका गावना ही भगती बन गया। इस वास्ते आप दे घर गुरुद्वारियां विच अज भी कीर्तन प्रधान है, अज भी गावना प्रधान है। गा के गुरु नाल जुड़ना है, गा के अकाल पुरख दे नाल जुड़ना है। रोंदा होया ते बच्चा भी नहीं चंगा लगता, रोंदा होया वड्डा मनुख किस तरह चंगा लगेगा, नहीं, उसके दर ते जाना है, गाउंदे हुए जाना है, संगीत दियां धुनां अलापदे हुए जाना है, ता ही परमात्मा की गलवकड़ी नसीब हो सकेगी। तो साहब कहिंदे हे अकाल पुरख, मैं ढाडी दी तरह कवि दी तरह तेरे दर ते आया हूं, ढाडी हर गुण गावदा जे हर प्रभ भावे, प्रभ मेरा थिर थावरे होर आवे जावे, सो मंगा दान गुसाइया जित भुख लै जावे। हे गुसाई, हे संसार दे मालिक, मेरी झोली विच ओ सौगात पा जिदे मिलदे आई सारिया ही भुखां दा अंत हो जाए, क्योंकि भुख है जिथे ते उथे दुख भी होवेगा, भुख ते दुख कट्ठे ही रहिंदे ने। धन दी भुख है दुख है, औलाद दी भुख है दुख है, प्रभता दी भुख है दुख है। दुख भुख नू जन्म देंदी है और भुख दुख दे आसरे ते खड़ी, ये दोनों दा चोली दामन दा साथ है। जिथे भुख होवेगी उथे दुख दा होना लाजमी है, कुदरती है। सब कहने हे परिपूर्ण परमात्मा, तू ऐसा दान मेरी झोली च पा कि भुख दा अंत हो जाए, ताकि भुख दे आसरे ते जो दुख खड़ा है उस दुख दा भी अंत हो जाए। है एक ऐसा पदार्थ जिदे नाल सारियां ही भुखां मिट जांदियां, साच नाम आधार मेरा जिन भुखां सब गवाइया। तो साहब कहने सो मंगा दान गुसाइया जित भुख लै जावे, हे गुसाई मेरी झोली दे च

0: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
1: इको एक हरमन प्यारा ग्रोसरी स्टोर फ्रूटी कैना जिना दे प्राइसेस होलसेल नालों भी घट हन। फ्रूटी कैना दी नवी लोकेशन साउथ सरी विच जल्द ही खुलन जा रही है 2982 152 स्ट्रीट। इस हफ्ते दे स्पेशल हन 11 जून तो 17 जून तक फ्रूटी कैना दी अनबीटेबल बॉक्स सेल। 22 पाउंड इंडियन स्टाइल रेड कैरेट्स लवो 18.99 दा बॉक्स, 30 पाउंड फ्रेश अदरक लवो 27.99 दा बॉक्स।

0: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
1: फैमिली केयर फार्मेसी
2: पूरे बीसी विच होम्योपैथिक दवाइयां च नंबर 1।